FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है सोमवार, शक संवत 1948, भाद्रपद माह, 30वीं तिथि, तदनुसार 21 सितंबर सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को ही अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। श्रीमती मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारी के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअली पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारी नडियाड के विकसित भारत के लिए, युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। साथ ही डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग आज गोवा में दिशा 2.0 योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला

0: का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सक्षम कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निःशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच को मजबूत करना है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू शामिल होंगे। उनके साथ विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। 10 दिवसीय ये सत्र 30 सितंबर तक चलेगा और इसमें 7 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने कल वाराणसी में झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीएस के प्रमुख ब्रिजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंझू करीब 2 दशक से फरार था। उसकी गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और एनआईए ने 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले सहित 50 से अधिक मामले दर्ज थे। नागालैंड के फिल्म निर्माता तेजा रियो की निर्देशित फिल्म अंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्लेटफॉर्म प्राइज 2026 जीता है। अंग उन 12 फिल्मों में से एक थी जिन्हें इस साल के प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एकमात्र प्रतिस्पर्धात्मक श्रेणी है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के पहले दिन शूटिंग में 2 रजत पदक जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। एलावेनिल वलारेवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। समय बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रयासों से समय बदलने की कोशिश कीजिए। एक छोटा कदम भी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ कदम होता है। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

हमारे केंद्र से आज दिन भर जो कार्यक्रम आपके लिए पेश किए जाएंगे उनका लिखा जोखा सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। दस बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। इस कार्यक्रम में आज का जो विषय है हमने चुना है, प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं, पर्यावरण बचाएं, हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक पर अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। गाने सुहाने प्रोग्राम दिन में 11 बजे और 11:30 पर कार्यक्रम शेरो नगमा, कुछ अशार मिलते जुलते नगमों के साथ। बारह बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम विवरण, 1:05 पर प्रादेशिक समाचार। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे शाम 5:30। शाम 6:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।

शाम 6:30 पर हरियाणा राज्य से समाचार समीक्षा आप सुनेंगे। 6:35 पर पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए पेश किया जाता है। शाम 7:45 पर

मुख्य प्रादेशिक समाचारों पर एक नजर होती है, उसके बाद आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाते हैं। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुर सांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। ये तो थे आकाशवाणी चंडीगढ़ से जो प्रोग्राम दिन भर आपके लिए पेश किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के साथ साथ विविध भारती मुंबई से कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस, उसके बाद 6:45 पर संगीत सरिता, 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर प्रोग्राम त्रिवेणी, 8:30 पर प्रोग्राम चित

0: ये तो था झरोखा आज के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: श्रोताओं, ये था लीजिए, अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे भाग 318, लंका कांड।

लंका में घमासान युद्ध हो रहा है। एक ओर श्री राम तो दूसरी ओर रावण के जयघोष के साथ दोनों ओर के वीर सेनानी एक दूसरे पर चढ़ दौड़ते हैं। वानर और भालू भीमकाय शिलाखंड किले पर फेंकते हैं। राक्षसों के पैर पकड़ उन्हें धरती पर पटक देते हैं। श्री राम के प्रताप से वानर सेना राक्षसों के झुंड के झुंडों को मसल कुचल डालती है और चारों ओर राम का जय घोष गूंज उठता है। राक्षसों के समूह युद्धस्थल से भाग खड़े हुए। नगर में स्त्रियों बच्चों और विकलांगों का क्रंदन सुनाई देने लगा। नगर निवासी इस विपत्ति के लिए रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना के पस्त होकर युद्धभूमि से भागने का समाचार सुना तो भागते सैनिकों को रोक चेतावनी दी, जो भी युद्ध में अपनी पीठ दिखाकर भागेगा मैं अपनी तलवार से उसे मार डालूंगा। मेरे दिए हुए भोजन पर पलने और भोग विलास करने के बाद अब तुम लोगों को प्राणों का मोह हो गया है। रावण से अपनी भर्त्सना सुनकर राक्षस योद्धा एक बार फिर युद्ध में आ डटे। सोचा, रावण के हाथों मरने की अपेक्षा लड़ते हुए शत्रु के हाथों मरना ही श्रेयस्कर है। नए उत्साह के साथ राक्षसों ने वानर सेना को त्रस्त कर दिया। अब भयभीत वानर भागने लगे। जिस समय हनुमान ने अपनी सेना में भगदड़ का समाचार सुना उस समय पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से उनका युद्ध हो रहा था। द्वार तोड़ना कठिन लग रहा था। हनुमान को अतिशय क्रोध हो आया। काल की भांति गर्जन करते हुए एक भीमकाय शिलाखंड लेकर वे लंका के किले पर जा चढ़े। फिर मेघनाथ के रथ को सारथी समेत छिन्न भिन्न कर दिया और लात से मेघनाथ की छाती पर ऐसा प्रहार किया कि वो धराशायी हो गया।

0: संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला का छठा भाग।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। दो शिष्य अपने गुरुजी से बार बार पूछा करते थे कि हम कैसा गाते हैं। गुरुजी चुप्पी साध जाते थे। जब बार बार पूछने पर एक दिन उन्होंने कहा कि गाना सुनाओ। गाना सुनाने के बाद फिर वही सवाल पूछा कि गुरुजी हम कैसा गाते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी तो हमने तुमसे रियाज सुना है। तुमने सिर्फ रियाज गाया है, गाना तो बहुत दूर है। तो खास बात यह है कि गायन में स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। जितना गायन सहज होगा उतना आत्मचेतना लाएगा। मैं सोचता हूँ कि अच्छे गायन के लिए हर जोड़ बेजोड़ होना चाहिए। उसमें बढ़त, बहलावे, डांट, कंपित, आंदोल, लहक, लाग, डगर, जरब, ध्रुव, स्मृत, मुरन, सूत, मींड, बल, पेंच, डांट, धुरन, मूर्छित, गमक, सपाट, छूट, गमक की ताने, बोल ताने, फिरत, जरब से गमक, कूट तान, कड़क, मंद्र मध्य प्रधान होते हुए भी तीनों सप्तक में सधी हुई ताने आदि आदि होना बहुत आवश्यक है। स्वर के उपासक माया के बंधनों को तान तलवार से काटकर राग रंग से भव सागर को तर जाते हैं। तो आइए मेरी स्वर रचित बंदिश सुनिए राग मारवा में।

गायक में यह विशेषता होनी चाहिए कि वो बंदिश को अपने गले के धर्म के अनुरूप स्वरूप में ढाल दे। आमिर खान साहब ने राग बिलासखानी में तानसेन के ध्रुपद को कितना खूबसूरत ढाला है, तो वह बंदिश मैं आपको गाकर सुनाऊं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस श्रृंखला का छठा भाग अभी आपने संगीत सरिता में सुना। इसे प्रस्तुत किया था प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गणपति बप्पा,
6: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
7: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
8: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
7: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
8: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
9: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
10: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: और शुरू करते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत इस गीत के साथ।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म सुरंग से मन्ना डी की आवाज में। शिवन रिजवी का लिखा गीत था, संगीत था शिवराम कृष्ण का।

0: मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की युगल आवाजों में अभी आपने गीत सुना फिल्म मस्ताना से। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे मदन मोहन का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
4: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
3: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
4: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
3: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
4: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
2: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अली बाबा और 40 चोर फिल्म का गीत। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। राजा मैनी अली खान ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है एस एन त्रिपाठी ने, साथ ही चित्रगुप्त ने।

0: हल्ला उठती पलकें हल्ला हल्ला।
1: अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अमर से लता मंगेशकर के स्वर में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और संगीत पर किया है नौशाद ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अमर से लता मंगेशकर के स्वर में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है और संगीत पर किया है नौशाद ने।

0: उत्तम सिंह, दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। बूट पॉलिश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार

0: बूट पॉलिश फिल्म का गीत आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में आपने अभी सुना, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा। मैं हूं पूजा नरानिया, नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला,

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तपस्या से किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में। एम जी हशमत का लिखा गीत, धुन बनाई है रविन्द्र जैन।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम हेराही प्यार के। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तकदीर से। उषा मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उषा तिमोथी की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के कार्यक्रम पिया का घर। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम हम है राही प्यार के। गीत गाता चल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चित्र चोर का गीत येशुदास और हिमलता की आवाजों में। संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन हैं।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। यशुदास, हेमलता और बंसरी सेन गुप्ता की आवाजों में गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन थे। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

रे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। बस अब से कुछ ही पलों में

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। और भारतीय ग्रैंड मास्टर्स ने समरकंद शतरंज ओलंपियाड में हॉलैंड पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों या सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, अभिनय, सिनेमाटोग्राफी, संगीत निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन जैसे पुरस्कार शामिल हैं। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, एनिमेशन, कला, संस्कृति पर फिल्में, नरेशन या वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट शामिल हैं। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में सिनेमा पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब और सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक को सम्मानित किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जानी मानी फिल्म हस्तियों की एक विशेष समिति पुरस्कार पाने वाले का नाम तय करती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ब्रह्मा कुमारीज नडियाद के विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी

0: 92 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहें, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है PM किसान योजना पर एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की सहायता 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। यह राशि किसानों के लिए खाद, बीज और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों में उपयोगी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है।
4: हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। PM किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है।
3: साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में 4,47,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा जिले के किसान बसंत पटेल ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, जिससे किसान बहुत खुश हैं।
5: किसान सम्मान निधि के 5 साल जो पढ़ाई गई है, किसानों को काफी खुशी है। ये योजना बहुत लाभदायक है।
3: योजना के तहत महिला किसानों को भी लाभ मिल रहा है। अब तक महिला किसानों को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा 2.0 योजना के तहत आज दक्षिण गोवा स्थित इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च के यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
6: कार्यशाला में प्रौद्योगिकी आधारित कानूनी सेवाओं, कानूनी जागरूकता और निशुल्क कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय तक लोगों की पहुंच मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नो योर राइट्स इन 90 सेकंड्स अभियान के तहत तैयार की गई सर्वश्रेष्ठ रील्स प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान न्याय प्रबोध स्लोगन प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया जाएगा। एक अन्य सत्र में न्याय बंधु निःशुल्क कानूनी सेवा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सदियों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण से भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। अयोध्या नगरी अब धार्मिक पर्यटन और विकास के वैश्विक पटल पर प्रमुखता से उभरी है। एक रिपोर्ट।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी।

0: श्री राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
1: राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
0: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा परिवर्तन हुआ है।
2: अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, वह चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
0: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने युद्ध को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का भी विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी युद्ध समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। इस बीच अमेरिका ने सऊदी अरब में सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। सऊदी अरब में कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों को ताइफ और यानबू शहरों की यात्रा के लिए विशेष अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम यमन के हौसी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद सहित कई शहरों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों के अनुसार इन हमलों को नाकाम कर दिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों तथा पंजाब, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने कल से ओडिशा में बारिश तेज होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। 3 से 4 दिन में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारतीय महिला टीम को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय पुरुष टीम लगातार 5 मैच जीतकर अंक तालिका में उज्बेकिस्तान और जर्मनी के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। उधर जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों में भारत के पदकों का खाता खुल गया है। भारतीय निशानेबाजों ने कल 2 रजत पदक जीते। एलावेनिल वलारिवन, विदर्शा विनोद और सोनम मस्कर की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी आज भी पदकों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। सिर्फ केंद्र के दम पर विकसित नहीं हो सकता भारत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वित्त मंत्रियों की बैठक में केंद्र ने राज्यों से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च बढ़ाने को कहा। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाए राज्य। अस्पतालों में मनमानी कीमत पर लगाम की तैयारी, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। राजस्थान पत्रिका के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों की खरीद कीमत और मरीजों से ली जाने वाली कीमत में भारी अंतर पर सरकार सख्त, कीमतों की होगी समीक्षा। गर्भपात कराना या नहीं, अंतिम निर्णय महिला का। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ का अहम फैसला दैनिक भास्कर में है। न्यायालय ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 28 सप्ताह के गर्भ समाप्त करने की दी अनुमति। बहुप्रतीक्षित एनपीएस स्वास्थ्य योजना में 30 लाख रुपए तक का मिलेगा बीमा, हिंदुस्तान की खबर है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। पेंशन फंड नियामक ने जारी किए दिशा निर्देश, अगले महीने लागू करने की तैयारी।
3: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल केवड़िया के एकता नगर में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध को लेकर अमेरिका फैसले की स्थिति में, निकट भविष्य में हो सकते हैं बड़े घटनाक्रम। सऊदी अरब में हौसी हमलों के बाद अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

0: अपने शहर की सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और बस वाहन चलाने वालों पर एक नजर डालिए। आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है? मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाने का मतलब है खुद को और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को खतरे में डालना। ये बातें मीडिया के जरिए बार बार समझाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग गाड़ियां चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। गाड़ी रोक कर 2 मिनट बात करके फिर आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो गाड़ी चलाते हुए ही की जा सकती है और खुद को और दूसरों को खतरे में डालना जरूरी है?
1: ए भाई दर्द।

हर सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

दरअसल वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपने शहरों की सड़कों को सुरक्षित बनाएं, हम सब यातायात के नियमों का पालन करें, हम सब दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें, चाहे वो हमारे फैशन,

हमारी स्टाइल के अनुरूप क्यों ना बैठता हो। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अपने बाल खराब हो जाने के डर से या अपना चश्मे की स्टाइल नजर ना आने के डर से हेलमेट लगाना पसंद ना हो, लेकिन हेलमेट आपकी जान की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हेलमेट के बिना बिल्कुल सफर पर निकलना ही नहीं चाहिए।

आइए हम अपनी और तमाम लोगों की हिफाजत करते हुए एक साथ अपनी सड़कों पर चलते रहें, किसी के लिए शामत या मुसीबत न बने।

तमाम शहरों में ट्रैफिक सिग्नल इसलिए लगाए गए हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चले, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की लाइट हरी होने से पहले ही वो अपने वाहन दौड़ा देते हैं। जरा सोचिए कि दूसरी तरफ से तेजी से आ रहा वाहन अगर आपके वाहन से टकरा जाएगा तो आपकी ये जल्दीबाजी आपको कहां पहुंचा देगी, ये सोचना कितना खौफनाक लगता है ना। जो सड़क सुहानी होती है वही सड़क आपके लिए जानलेवा भी बन सकती है।

0: HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV

0: की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
2: मैं ता टीका ला लिया और तू भी ला ले।
3: नहीं यार मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
0: आज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: कोची पलो में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र लोक।
5: गणपति बप्पा
6: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

नई धुनों, नई उमंगों और खूबसूरत एहसासों के साथ और कुछ जानकारी के साथ सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं पूजा नारायणिया, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरू करने जा रहे हैं अब कार्यक्रम चित्रलोक, अ वेरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। शांति एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया बनाने का नाम है जहां हर इंसान सुरक्षित हो, सम्मान के साथ जी सके और अपनी बात कह सके। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की थी। बाद में वर्ष 2001 में 21 सितंबर को अहिंसा और युद्ध विराम के दिन के रूप में निश्चित किया गया था। इस वर्ष 2026 की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरी वन एवरीवेयर एवरी डे, यानी हर व्यक्ति हर जगह हर दिन शांति में निवेश करें। लेकिन सवाल है, शांति में निवेश आखिर कैसे? पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, उसके बाद हम बात करते हैं आगे शांति के बारे में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे शांति के बारे में। शांति के लिए हमेशा बड़े मंच या बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। किसी की बात धैर्य से सुनना, गुस्से में एक पल रुक जाना, मतभेद होने पर संवाद का रास्ता चुनना, किसी दुखी व्यक्ति का साथ देना, ये भी शांति की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि शांति दुनिया के नक्शे पर नहीं, सबसे पहले हमारे व्यवहार में बनती है। घर में सम्मान होगा तो परिवार में शांति होगी, समाज में संवाद होगा तो दूरी कम होगी, और जब इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश करेगा तो दुनिया भी थोड़ी बेहतर होगी। संयुक्त राष्ट्र का 2026 का संदेश भी इसी बात पर जोर देता है कि शांति केवल बातचीत की मेज पर नहीं बनती, इसे हमारे स्कूलों, मोहल्लों, समुदायों और रोजमर्रा के जीवन में भी बनाया जाता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें, बात होगी तो संवाद से, मतभेद होगा तो सम्मान के साथ, और गुस्सा आएगा तो जवाब देने से पहले थोड़ा हम ठहर कर ही बात करेंगे। क्योंकि दुनिया में शांति लाने की शुरुआत कहीं दूर से नहीं, हमसे और हमारे आसपास से ही होती है। शांति केवल एक सपना नहीं, हर दिन किए जाने वाला

0: पति पत्नी और वो दो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नीलकमल सिंह, शिवा चौधरी और टोनी कक्कर की आवाजों में। आशुतोष तिवारी और टोनी कक्कर का लिखा गीत था। इस गीत को संगीतबद्ध किया नीलकमल सिंह ने, साथ ही टोनी कक्कर ने।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक अंतराल का।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहले

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: Make it pop like this. Make it knock, knock, knock, knock, knock like this.

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना रोमी और तनिष्क बागची की आवाजों में। नीरज राजावत का लिखा गीत था, धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। और अब अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये लाइन सुनते ही जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है वो है बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान। अभिनय में अपनी अलग पहचान और खूबसूरत अंदाज, साथ ही बेबाक व्यक्तित्व से करीना ने हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम बनाया। करीना की खासियत सिर्फ

उनकी खूबसूरती नहीं बल्कि उनका आत्मविश्वास और हर किरदार को अपने अंदाज में जीने का हुनर भी है। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर ढेरों प्यार और शुभकामनाओं के साथ कहेंगे हैप्पी बर्थडे करीना। यूं ही अपनी शर्तों पर जीती रहिए, मुस्कुराती रहिए और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतती रहिए। और अब करीना कपूर की पसंदीदा फिल्मों में से एक खूबसूरत गीत आपके लिए।

0: जब वी मैट फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत था।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं एजेंट विनोद फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं आपको बता दें कि आज 21 सितंबर और आज है विश्व अल्जाइमर दिवस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर के किसी बुजुर्ग को किसी का नाम याद ना आए, एक ही बात बार बार पूछे या रोजमर्रा की जानी पहचानी चीजों को पहचानने में परेशानी होने लगे। कभी कभी हम इसे उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा समझकर टाल देते हैं, लेकिन हर भूल सिर्फ उम्र का असर नहीं होती। इन्हीं बातों के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित कर सकती है। इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इस दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य है जानकारी बढ़ाना, शुरुआती संकेतों को पहचानना और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेने के लिए लोगों को जागरूक करना। और शायद सबसे जरूरी बात, अल्जाइमर से जूझ रहे व्यक्ति को हमारी झुंझलाहट नहीं, हमारी समझ और साथ ही तो चाहिए। तो आज विश्व अल्जाइमर दिवस पर एक छोटी सी बात याद रखिए, याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन इंसान की गरिमा और उसके प्रति हमारा अपनापन कभी कम नहीं होना चाहिए।

0: पा फिल्म का गीत ये आप सुन रहे थे। इस गीत के गायक कलाकार थे बावथारिणी और श्रवण, साथ ही साथियों ने साथ दिया।
1: आज फिर लेट हो गए।
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: टशन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, सुनिधि चौहान और पीयूष मिश्रा की आवाजें। लिखा है इस गीत को पीयूष मिश्रा ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने। आज करीना कपूर का जन्मदिन है, इसीलिए हमने ये गीत भी उनकी फिल्म से चुना। और साथ ही आपको बता दें श्रोताओं कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेत्री करीना कपूर पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। और अब आपको सुनवा रहे हैं कुछ संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म से। रोमी ने और लीजो जॉर्ज ने इस गीत को गाया है, कुमार ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है लीजो जॉर्ज ने।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: ਜੰਬੋ ਜੇਟ ਜੰਬੋ ਜੇਟ ਲੰਡਨ ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਥੇਟ ਜਗਲੋ ਵਸਲੋ ਪੁੰਨਾ ਬੇਟ ਜੰਬੋ ਜੇਟ ਸੋਈ।
4: ਮਰਾਠੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀ ਅੱਪਾ ਵਡਾਵਕਰ।
3: ਰਾਤਰਨ ਦੀਨ ਆਮਾ ਯੁੱਧਾ ਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਾਤਰਨ ਦੀਨ ਆਮਾ ਯੁੱਧਾ ਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ।
4: ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਲੇਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ अपने जीवन की कहानी।
3: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
4: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अब आपको सुनवा रहे हैं कॉकटेल 2 फिल्म से प्रीतम और अरिजीत सिंह का गाया ये गीत। गीतकार और संगीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने भी इस गीत को गाया है और लिखा भी है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार है प्रीतम।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

जब तक है जान, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाजों में, गुलजार का लिखा गीत, ए आर रहमान का संगीत।

0: स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
0: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम चुटुलू की आखिरी प्रस्तुति। मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म से। शान ने इस गीत को गाया है, देव कोहली का लिखा गीत है और अनु मलिक का संगीत।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए

0: मैं प्रेम की दीवानी हूँ इस फिल्म का गीत आप शान की आवाज़ में सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होने जा रहा है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को, नमस्कार। आप सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम
1: और ये है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1,000+ विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 5-25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आज का अखबार।
3: आज का अखबार।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी अनिल पुंज। इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे 10 बजे तक। अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स इस प्रोग्राम में आपके लिए हम प्ले करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं एशियन

गेम्स की तरफ। यहाँ भारत के खिलाड़ियों ने भाई कमाल किया है, धमाल किया है जी। एशियन गेम्स में निशानेबाज बेटियों ने चांदी से खोला है अपना खाता। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर, व्यक्तिगत में स्वर्ण से चूकी एला। और भारत ने 20वें एशियाई खेलों में 2 रजत पदक जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत कर दी है। आज की अखबारों में इससे जुड़ी खबरें हैं, तस्वीरें हैं और खिलाड़ी अपने अपने पदकों के साथ नजर आ रहे हैं। और इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। दोनों पदक 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में निशानेबाज बेटियों ने जीते हैं। कल एला वेनिल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में 252.4 अंक से चांदी पर निशाना साधा। जापान की हिनाता ताइची से वो महज 0.6 अंक से स्वर्ण लेने में चूक गईं। इससे पहले एला ने टीम स्पर्धा का भी रजत पदक हासिल किया, लेकिन व्यक्तिगत में वो सोने का पदक जीतने से चूक गईं और रजत ही मिला। इसके साथ साथ बात करें रोहतक की दीपिका के बारे में। रोहतक की दीपिका का दोहरा रिकॉर्ड बना है। उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 8 गोल दागे हैं। भारतीय महिला टीम ने पूल बी के पहले मैच में उज़्बेकिस्तान को शिकस्त दी है। रोहतक की बेटी दीपिका सहरावत ने 8 गोल दागकर रिकॉर्ड बनाया है। ये हमारी जो हॉकी की टीम है, भारतीय महिला हॉकी टीम, उसकी बात कर रहे हैं। वो एशियाई खेलों के एक मैच में 8 व्यक्तिगत गोल करने वाली पहली भारतीय और विश्व स्तर पर भी ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। देखिए कितना शानदार रिकॉर्ड बनाया है दीपिका ने, 8 गोल दागे हैं। और रोहतक की बहु सूचिका ने जूडो में पक्का किया पदक। और एशियाई खेलों में अगर बात करें क्रिकेट टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तो रोहतक की शेफाली का तूफानी शतक रहा है। रोहतक की ही दीपिका ने भी कमाल किया है और शेफाली ने भी कमाल किया है। अब श्रीलंका से होगी स्वर्ण के लिए भिड़ंत। अब कमाल ये किया है कि 49 गेंदों पर शेफाली ने 100 रन की तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम को क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा दिया है। शतक के बाद शेफाली के माता पिता ने ये लिखा है आज के अखबार में कि हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई और सोने के लिए उसे श्रीलंका को हराना होगा। एशियाई खेलों के इतिहास का ये पहला शतक है। फाइनल जो है वो मंगलवार को यानी कल खेला जाएगा। इसके साथ साथ बात करें हॉकी, बैडमिंटन और क्रिकेट में भी भारत की जोरदार शुरुआत रही है। भारतीय हॉकी टीम ने बेहतरीन जीत से पदक की ओर कदम बढ़ाया है। महिला टीम ने अपने पहले मैच में, जैसा कि हमने बताया, कि उज़्बेकिस्तान को 19-0 से हराया है। ये वही मैच है जिसमें दीपिका ने 8 गोल दागे हैं और पूरी टीम ने उज़्बेकिस्तान को 19-0 से हराया है। पुरुषों की टीम ने भी, पुरुष हॉकी में भी भारत ने कमाल कर दिखाया है। पुरुषों की टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हराया है। 1-2, 3-13 और 19-0 से महिला हॉकी टीम ने हराया है। बैडमिंटन में अगर बात करें तो भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराया है। पदक तय करने के लिए जापान से भिड़ंत होगी, मुकाबला भी बाकी है। और क्रिकेट में भी बेटियों ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। और इन तमाम उपलब्धियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रदर्शन पर बेटियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कड़ी मेहनत और टीम वर्क से शानदार नतीजे मिलते हैं। भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को भी SIR नोटिस। रॉकेट के पुर्जों से लेकर सौर पैनल के उपकरण तक देश में ही बनाएगा इसरो। केदारनाथ हेमकुंड साहब के लिए हेली सेवा की बुकिंग 22 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। दवाओं की होम डिलीवरी पर लग सकती है रोक, फिलहाल समीक्षा जारी। और अब कफ सिरप की बोतल पर मिलेगी लाल रंग की चेतावनी। अब चलते हैं राजस्थान के जोधपुर में। जोधपुर में भारत जापान के वायुसेना प्रमुखों की तेजस उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मास्को पर चुनाव के दिन बड़ा

हमला, यूक्रेन ने 1600 ड्रोन दागे। उधर पश्चिम एशिया में ईरान ने अमेरिका को 7 शर्तें भेजी हैं। वीकेंड पर बीच में ही लौटे राष्ट्रपति ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र महासभा कल से न्यूयॉर्क में। ताइवान में स्विमिंग कार्निवल, 38 देशों के 21,700 तैराकों ने पार की सबसे बड़ी झील। कुछ और खबरें हैं राष्ट्रीय स्तर की। परख योजना आज से लागू हो रही है, जांच तेज होने की उम्मीद है। पहली बार गांव की सड़कों की डीपीआर एआई से जांची जाएगी। और 10 अक्टूबर से पहली अक्टूबर से एलपीजी सब्सिडी अब बायोमेट्रिक के जरिए। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

ओ गोरी चोरी चोरी हर कोई तुझे देखता है, दूर से नजारा करके आंखें सेकता है, क्यों ना तुझे चाहें, क्यों ना तुझे देखें, तू चीज है गजब की।

0: अप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 9:45 हो चुके हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। सबसे पहले पंजाब

आपकी बात करें 47 किलो हेरोइन और 3 विदेशी पिस्टल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। फरीदकोट में अब तक की बड़ी बरामदगी, 42 पैकेट मिले हैं। पुलिस का नशे पर प्रहार है। और उधर अटारी जब्बाल रोड पर 10 किलो हेरोइन के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन बठिंडा के जयसिंह वाला गांव की ये खबर भी हैरत में डाल रही है। एक 24 साल का बेटा चिट्टे की चपेट में है, लेकिन माँ मजदूरी कर रही है। ऐसे में गांव की महिलाओं की सरकार से गुहार कि नशा बेचने वालों को पकड़ो, बच्चों का हो इलाज। एक अच्छी खबर है कि लुधियाना का एक बुजुर्ग गलती से ट्रेन में बैठकर बिहार पहुंच गया। वहां एक युवक ने AI की मदद से उस बुजुर्ग को अपने घर लुधियाना पहुंचाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण की फाजिल्का में शुरुआत की और कहा कि कुछ लोग नशा मुक्त पंजाब यात्रा को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। पंजाब सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के 1107 मामलों में 1146 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब चलते हैं दोस्तों हरियाणा की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाड़वा कुरुक्षेत्र के गांव का दौरा किया और कहा 400 करोड़ में बनेंगे 150 स्कूलों के भवन। हरियाणा में पराली की होगी ड्रोन से निगरानी, आग की तीव्रता और राख तक दर्ज होगी। रोहतक की खबर है, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी में हाइफा फिल्म फेस्टिवल में मोमाकू बनी बेस्ट इंडियन फीचर फिल्म। जतिन सरना और सीजी प्रदीप को अभिनय पुरस्कार। हरियाणा में आज से फिर खुलेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। 3 दिन में दावों का सत्यापन होगा और हरियाणा में कॉलेज प्रोफेसर्स को ग्रामीण सेवा में 1 साल की छूट। पंजाब हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल की ओर। रेणुका जी में अब सुनाई देगी बाघों की दहाड़। महाराष्ट्र से पहुंचा रॉयल टाइगर का जोड़ा। हिमाचल राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट है कि हिमाचल में मानसून के दौरान 329 मौतें हुई हैं और 3218 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब यहाँ एक म्यूजिकल नंबर प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी दे दें, क्योंकि आखिरी तारीख दोस्तों नज़दीक आ रही है। 30 सितंबर लास्ट डेट है इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर पर IOTP को दर्ज करना है, फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1-3 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है और सबमिट कर देना है। और ये वीडियो किस संदर्भ में होगी हम आपको बता दें, अपने ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, इतिहास और स्थानीय उपलब्धियों को रचनात्मक क्रिएटिव तरीके से डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना है। इसका एक मौका दिया जा रहा है जेम्स ऑफ इंडिया में उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स को। तो 30 सितंबर लास्ट डेट। फिलहाल बारी गाने की।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। सबसे पहले चलते हैं पंजाब विश्वविद्यालय। सीनेट चुनाव में सन्नाटा, केवल 14.68% मतदान हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट मतदाताओं ने नहीं दिखाया उत्साह। शिक्षकों में 91.72% और प्रिंसिपल्स में 100% मतदान। सूची में 6.25 लाख वोटर। चंडीगढ़ PGI में अग्नि सुरक्षा कार्य के चलते 22 सितंबर से बदलेगी व्यवस्था। और क्या बदलेगी कि आंखों की वॉक इन OPD अब न्यू OPD ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर। चंडीगढ़ में अखबार लिखती है कि बारिश थमी है, धूप बढ़ाएगी गर्मी। 23 सितंबर तक पारा 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। 25 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। चंडीगढ़ की सुखना लेक से सेक्टर 17 तक गूंजी सड़क सुरक्षा की मुहिम। साइक्लोथॉन में 400 लोग हुए शामिल। ट्रैफिक नियमों और गुड स्मार्टिजन कानून की दी जानकारी। दौड़े कदम गूंजा देशभक्ति का जज्बा। चंडीगढ़

300 से ज्यादा युवाओं, सैनिकों और फिटनेस प्रेमियों ने लगाई दौड़। चंडीगढ़ में CHB फ्लैट्स की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी इस मामले में।

आंखों में आंसू दिल में आस्था जयकारों के बीच बप्पा को दी भावपूर्ण विदाई। चंडीगढ़ सेक्टर 19 के महाराष्ट्र भवन में हुई महाआरती। अथर्व शीर्ष का पाठ कर मंगल कामना की। विसर्जन से पहले भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर सजेगा कालीबाड़ी का दुर्गा पूजा मंडल। चंडीगढ़ 16 अक्टूबर से शुरू होगा दुर्गा उत्सव। 16 कलाकार दिन रात पंडाल को दे रहे हैं आकार। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम करें तो नशे का कारोबार टिक नहीं सकता। नशेड़ियों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस पहली बार चला रही एक अभियान। चंडीगढ़ में 2-3 दिन में हो सकती है मानसून की विदाई। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब

0: तो साथियों, ये तो था आज का अखबार कार्यक्रम आज के लिए, लेकिन कल फिर इस प्रोग्राम में आपकी और हमारी होगी मुलाकात। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, और अपना, अपने आसपास का भी ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का अखबार कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए

0: दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को उसके 15वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में सेकी ने भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा को आगे बढ़ाने और देश के स्वच्छ ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा पंजाब में 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशे की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित कल्याणी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कोलकाता एयरपोर्ट पर बढ़ते दबाव को कम करना और दक्षिण बंगाल में हवाई संपर्क का विस्तार करना है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की कि राज्य सरकार 28 सितंबर को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत 4 हवाई अड्डों के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। इन हवाई अड्डों का विकास पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाईकुंडा में किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष को लेकर फैसले की स्थिति में है और निकट भविष्य में बहुत बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने संघर्ष को लेकर 3 विकल्पों पर चर्चा की। उन्होंने ईरान को पूरी तरह से खत्म करने या उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की बात कही या फिर समझौते का विकल्प दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखी हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 5वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए हॉलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: गणपति बप्पा बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: और लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

0: नमस्कार साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 11 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और आपको मालूम है किसी एक मुद्दे पर हम बात करेंगे, उसी मुद्दे से जुड़े आपके विचार इस प्रोग्राम में हम साझे करेंगे, आप रखेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ आप कहेंगे और ये कारवां अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, मिलजुल कर पहुंचेगा। और वैसे भी दोस्तों, मिलजुल कर जब हम कोई प्रयास करते हैं तो वो सफल होता है, सफलता की ओर जो है वो बढ़ने लगता है। तो आज बात करेंगे हम जिस मुद्दे पर, वो मुद्दा अक्सर इस प्रोग्राम में हमने उठाया है और आपके विचार साझे किए हैं इस प्रोग्राम में। प्लास्टिक को लेकर बात आज फिर से इस प्रोग्राम में करेंगे कि प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं। जी, और अगर आपने भी अपनी जीवन से प्लास्टिक को हटाया है या धीरे धीरे उसे दूर कर रहे हैं और कपड़े का थैला इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है हमारा, हमारे समाज का, हमारी धरती का, हमारे पर्यावरण का, बस इन बातों के बारे में आपने बातें करनी है। तो टॉपिक पूरा सुन लीजिए कि प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं और पर्यावरण बचाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। क्योंकि जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो उसमें स्वच्छता केवल हमारे आसपास की नहीं होती या अपनी आसपास को हरा भरा बनाने की नहीं होती, बल्कि हरे भरे और हरियाली को प्लास्टिक से मुक्त करना भी होता है। तो ये सब जो बातें हैं आपस में गूंथी हुई हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। एक प्रयास करते हैं तो ना जाने कितना असर जो है चारों तरफ जो है वो होता है। तो इसीलिए आज ये टॉपिक चुना है कि प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। हमारे नंबर्स हैं 2660615 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं हमारे, किसी एक को डायल करना है आपने और हमसे बातें कर लेना है। तो चलिए, यही इंतज़ार हमें था, हमारे श्रोता आ चुके हैं। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नाम बताएं, जगह का नाम बताएं।
1: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: वाह राकेश जी, कोटखाई से इतनी जल्दी आप पहुंच गए इस प्रोग्राम में सबसे पहले नंबर पर।
1: जी जी, पहुंचना पता है तो बाकी बाकी बाकी की तैयारी भी करनी होगी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात। तो क्या कहना चाहेंगे राकेश जी?
1: जी मैं

0: ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये जो प्लास्टिक की जो है थैली है, इसका बिल्कुल दुरुपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम कहीं जाते हैं, मान कि सामान के लिए हम कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो अपने साथ जो है एक झोला अवश्य रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए। और क्या बोलते हैं, जब आप जाते हैं, मानो कि आपने छोटा मोटा सामान लाना हो, तो एक छोटी थैली आती है तो उसको भी रख सकती है। या तो अगर कपड़ा का थैला आप खुद बना सकते हैं घर घर में, फिर उसको रख सकते हैं। और मैं आप अपनी बात कही तो हमारा एक ये शुरू सी आदत रही है, हम जब कहीं भी जाते हैं, चाहे अपने गांव के बाजार जाते हैं, चाहे बड़े बाजार जाते हैं, लेकिन एक थैला हम जो है झोला जो है जरूर रखते हैं।
1: वाह, क्या बात है। और राकेश जी, आपने एक बात नोट की कि ये
0: जी
1: कई बार हमारा जो कपड़े का थैला होता है ना,
0: जी
1: ये देखने में भले छोटा सा लगता हो, लेकिन इसकी
0: जी
1: जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है।
0: जी जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है।
1: हाँ, ये भी आ गया, वो भी आ गया। और जब हम बिना थैले के जाते हैं बाजार
0: जी
1: में, तो
0: जी
1: बार बार हमें कोई ना कोई प्लास्टिक की थैली लेनी पड़ती है।
0: तो बस वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मानो कि कई बार हम सोचते कि अरे अब किसने वो ये झोला उठाना है, तो क्या करते हैं हम बाजार से, तो फिर और उनको तो प्लास्टिक की जो है थैली देनी
1: और
0: पड़ी।
1: जितनी जितनी आइटम्स हमारी बाजार से खरीदी, उतनी ही थैलियां।
0: इतनी थैलिया जी
1: अब एक बैग अगर कपड़े का होगा, चाहे आपके
0: जी
1: घर का है या बाजार का आपने लिया हुआ है, कपड़े का
0: जी
1: थैला अगर एक होगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो वही तो है, सब कुछ आ जाएगा। तो मैं बोलता हूँ, जब हम कई बार हम छोटे मोटे जैसे लाते हैं, जैसे कि दालें लाते हैं या तेल या जो भी कुछ लाना है, तो नहीं तो अलग अलग थैले ले ले जानी पड़ती है। लेकिन हम जो है एक बड़ा बड़ा थैला बनाओ, तो उसी थैला में जो है सब कुछ आ जाएगा एक ही।
1: जी बिल्कुल सही। और हमें ये जानकर खुशी हुई कि राकेश जी अपने घर में कपड़े का थैला इस्तेमाल करते हैं, झोला।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, झोला हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम ही नहीं पूरा पूरा परिवार जो है एक आदत बना रखी। लेकिन हमने ये भी ऐसा सिस्टम बनाया, लेकिन एक एक सिस्टम ऐसा बनाया कि उसमें जो है हमने थैले रखे हुए कि भाई जो भी कोई जाएगा तो अपने उस अलमारी से थैला निकालेगा, फिर जाएगा जहाँ भी जाना है।
1: जी, तो आपके गांव में, आपकी पंचायत में प्लास्टिक को हटाने के लिए या प्लास्टिक को दूर करने के लिए काम किए जाते हैं
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल
1: लोगों
0: किए
1: को
0: जाते हैं,
1: जागरूक किया
0: और
1: जाता है?
0: बिल्कुल किए जाते हैं। और हमारे गांव में जब भी कोई भी आता है हमारे घर में, चाहे कहीं भी आते हैं, लेकिन उनके पास सबके पास जो है कपड़े का थैला होता है। जितने भी टोटल पूरा गांव है, जब चाहे कहाँ जाते हैं, जैसे मानो कि हमारे घर में कोई आ गया या कोई चीज लेके आ गया, लेकिन कपड़े का थैला जो होता है तो उसमें ला देते हैं।
1: जी बिल्कुल सही है राकेश जी, आपका धन्यवाद करते हैं बात करने के लिए।
0: जी जी धन्यवाद।
1: हेलो चंडीगढ़
2: हेलो
1: जी, वेलकम,
2: हेलो हेलो,
1: फरमाइए, नाम बताइए। अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही। लीजिए, अगले श्रोता से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
3: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके?
3: सर। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सब लोगों की, जो यहाँ पे अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से जो कपड़े के थैले चलाए हैं और
1: कपड़े के
3: देख रहे
1: थैले,
3: हैं,
1: मैंने सोचा
3: और
1: कहीं
3: बहुत
1: क्यों के
3: अच्छी
1: बांट
3: तरीके
1: रहे
3: से मजा आ रहा है।
1: हैं कपड़े के थैले, हम क्या कर रहे
3: क्योंकि सर ऐसा होता है,
1: भाई,
3: देखो
1: अपना
3: जैसे
1: अपना
3: कि
1: अपना अपना थैला रखना, हमारे पास अपना थैला है।
3: जी,
1: हाँ, तो
3: तो
1: बताइए
3: ऐसा
1: क्या
3: होता
1: कहना
3: है सर,
1: चाहेंगे।
3: जैसे कि हमारे पास में पैंटे हमारी पुरानी हो जाती हैं,
1: हाँ,
3: उसकी भी थैले बहुत अच्छे बन सकते हैं
1: अरे बिल्कुल, घर में इतने कपड़े
3: जी,
1: होते
3: घर में
1: हैं,
3: वो चीज काम आती है। तो
1: पर होता
3: उसके
1: ना
3: नंबर
1: आजकल
3: एक,
1: ये।
3: नंबर दो जैसे कि इनका अपना रखे चावल के कटे हैं,
1: हाँ,
3: उसके बीच में से दो थैले बनते हैं, देखो कितना अच्छा मजा आता है। और वो सारी चीजें अपनी जगह पे, कितना सुकून के साथ में, तसल्ली के साथ में सारे काम होते चले जाते हैं।
1: अपना नाम बता दीजिए एक बार।
3: सर मेरा नाम पंचकूला 8 सेक्टर मार्केट से फजलू खान, सॉरी
1: फजलू
3: नाम नहीं
1: खान,
3: बता सका
1: नहीं
3: मैं।
1: कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आप फजलू खान भाई बोल रहे हैं, लेकिन एक
3: जी
1: रिवायत है जिसको हम निभा रहे
3: हाँ
1: हैं।
3: जी हाँ जी हाँ
1: अच्छा,
3: जी
1: एक चीज इसमें देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की
3: जी
1: कि घर में जो कपड़े होते हैं उसका थैला
3: हाँ
1: बनाया जा
3: हाँ
1: सकता
3: हाँ
1: है।
3: जी
1: हम इस मामले में वोकल फॉर लोकल भी कर सकते हैं।
3: जी हाँ जी बहुत
1: पूछिए
3: अच्छा कर
1: कैसे कर
3: सकते हैं।
1: सकते हैं
3: हाँ जी
1: कि हमारे घर के आसपास की जो मार्केट में
3: जी
1: आपने जगह जगह देखे होंगे सिलाई वाले बैठे होते
3: हाँ
1: हैं,
3: जी हाँ जी हाँ जी
1: एक उनका अपना रोजगार है ना,
3: हाँ जी
1: तो उनकी एक

0: तरह की मदद भी हो सकती है
1: हाँ जी,
0: कि आप
1: बहुत
0: उनको
1: अच्छा
0: अपने घर का कपड़ा जाकर दें और कहें कि इसका
1: हाँ जी,
0: एक बढ़िया सा
1: एक बहुत अच्छा सा थैला बना दो
0: थैला बना दो।
1: जी,
0: आपका थैला बन गया,
1: जी
0: उसको काम मिल गया
1: उनको काम मिल गया, बिल्कुल सच्चाई बात है सर।
0: है? और ऐसे छोटे मोटे रोजगार जो होते हैं इनका ख्याल हमें रखना
1: हाँ,
0: चाहिए।
1: और ये लगाइए कि मेरा मेरी अपनी शॉप के ऊपर मैं रोज के हिसाब से बर्फ लेके आता हूँ, मैं तो कपड़े के थैले के बीच में बर्फ लेके आता हूँ
0: क्या बात है।
1: जी। उसमें क्या होता है कि ना अपना कि जो हम कैंपर में बर्फ डालते हैं अपने घर की बर्फ होती है, उसमें सारा सारी चीजें अपनी जगह सेट हो जाती हैं,
0: बहुत बढ़िया
1: और
0: बहुत बढ़िया।
1: खाना आता है, खाना भी कपड़े के थैले में होता है, जो टिफिन होता है उसमें क्या उनका किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं होती
0: जी बिल्कुल सही है।
1: जी।
0: और अगर थैले की बात करें तो भाई झोले की बात
1: बहुत
0: करें तो ये तो बहुत पॉपुलर
1: हाँ
0: चीज़
1: जी
0: रही है हमारी
1: हाँ जी
0: हमारी अपनी परंपरा में।
1: हाँ जी,
0: पुराने ज़माने में थैला ही
1: पुराने जमाने में
0: इस्तेमाल
1: बिल्कुल
0: होता
1: सच्चाई
0: था।
1: बात है सर
0: घर के कपड़ों से इतने शानदार तरीके के
1: हाँ जी,
0: डिज़ाइनदार थैले बनाए जाते थे।
1: बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं सर
0: और फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड की फिल्मों में
1: हाँ हाँ जी
0: झोले को लेकर कई गाने बन गए, थैले
1: हाँ जी
0: को लेकर बन गए। अब एक ऐसे ही गाना प्ले करते हैं, सुनिए।
1: शुक्रिया जी, मेहरबानी।

का साल का कोलैबोरेशन। सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1,000+ विनर्स। 2 लीटर

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: और आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज फिर से इस प्रोग्राम में प्लास्टिक की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। हेलो चंडीगढ़।
4: गुड मॉर्निंग।
3: वेरी गुड मॉर्निंग।
4: प्रदीप बोल रहा हूँ सर।
3: जी प्रदीप जी, क्या हाल चाल है?
4: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं?
3: अभी रास्ते में हैं कि?
4: नहीं नहीं, अभी रास्ते में नहीं, अभी घर पे हूँ बस, अभी तैयारी हो रही है टूर पे निकलने की।
3: अच्छा, कहाँ जा रहे हैं?
4: आज मैं जा रहा हूँ लुधियाना के अंदर।
3: वाह क्या बात है, चलिए आपका सफर सुखदायी रहे और जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम पूरा हो जाए।
4: चलिए, वो सब ठीक है सर,
3: बहुत अच्छे हैं। तो
4: ये जो आपने आज जो रखा है ना कपड़ों का थैले वाला जो रखा है,
3: हाँ हाँ,
4: तो ये एक बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक का पॉइंट जो रखा है बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं आज से, अगर हम 25 से 30 साल पहले जाएं तो हर कोई कपड़े के थैले में सामान लेके आता था, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई पॉलिथीन का आगमन होता चला गया। लेकिन अभी फिर जो ये नई जनरेशन जो आ रही है, जो बच्चे यंग में जा रहे हैं, इनको इसका अवेयरनेस मालूम पड़ गया है कि हमें भाई हमें ये जो आपका पॉलिथीन से या उसका जो है कपड़े का थैला यूज करना चाहिए। और सेकेंडली जो हमारे घर में पेंटे हैं या जो हम लोगों का कुछ भी जो भी पुराना घर में ऐसे कपड़े होते हैं उसका भी हम थैले बनाकर हम उसको बेच भी सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। सपोज करो कि आपके घर में बहुत सारे, अभी क्या होता है कि आजकल कपड़े फटते तो है नहीं सर, क्योंकि लोगों के पास कपड़े इतने हो गए। पहले तो ये होता था कि एक पैंट होती थी, उसी को धो लिया और उसी को जो है पहन लिया। अब तो क्या है कि भगवान के पास सब लोगों के पास में काफी कपड़े होते हैं और वो कपड़े फटते नहीं है, वो डिस्कार्ड में जाते हैं। तो उनका भी अगर थैला बनाकर हम किसी को डोनेट भी कर सकते हैं। सब्जी मंडी में जैसे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कुछ लोग थैले बेच रहे होते हैं, गरीब लोग, उनको दे दो, वो उससे अपने अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जो कपड़ा वेस्टेज जा रहा है उस कपड़े को सही सदुपयोग हम कर सकते हैं इस थैले के रूप में। एक तो पर्यावरण हमारा हाँ, अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो गंदगी जो हमें दिखाई देती है ना, जगह जगह कूड़ा, सपोज करो किसी की स्ट्राइक हो गई या वो हो गया, उससे भी हमारे को निजात मिलेगी।
3: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी
4: जी प्रदीप जी, बीमारी से भी हम लोग बच सकते हैं।
3: हाँ प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और अभी आपसे पहले जिन श्रोताओं से बात हो रही थी मेरी, फजलू खान साहब से, तो हमने ये भी कहा कि कपड़े का थैला जब आपने बनाना हो, आप बनवा भी सकते हैं, आप नहीं बनाने का टाइम है तो आपके घर की मार्केट के आसपास कहीं नज़दीक पेड़ के नीचे कोई सिलाई करने वाला बैठा है, आप उसे रोजगार दे सकते हैं।
4: यस यस यस, सही बात
3: जी, उसकी कमाई का साधन बन सकता है।
4: यस यस, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो दे सकते हैं। अभी आपने देखा है कि जैसे बड़ी जगह मंडी लगती है तो वहां पर कुछ लोग थैले बेच रहे होते हैं सब्जी के लिए, ये मैंने देखा है। जैसे चंडीगढ़ भी देख लो आप, पटियाला देख लो, एनी मोर बड़ी सिटी में देखेंगे तो वहां पर थैले बेचते हैं। तो आप थैले बना के उनको भी दे सकते हो, मालूम है कि आपके लिए तो कपड़ा वेस्टेज नहीं है।

0: रखते जाए, उसके ठेले बनाओ उनको दे दो, वो दो पैसे की अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है,
0: एक समाज सेवा भी हो सकती है और एक कपड़े का सदुपयोग हो सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है ना पुन साहब, वो ये है कि आपको पॉलीथिन से निजात मिलेगी,
1: मिलेगी,
0: आपकी सिवरेज की जो नालियां है वो ब्लॉक होने से बचेंगी, और जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है ना, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
1: और देखिए जब आप थैली का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक का, तो बाहर से सब कुछ दिखाई देता है कि आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या खाते हैं, आप क्या खरीदते हैं। थैला जो है वो आपकी निजता को भी ध्यान में रखता है, है ना, कोई देख नहीं पाता कि इस जादू के पिटारे में है क्या।
0: हमारे बुजुर्ग बोलते थे ना, खाना और पहनना दोनों छुपा के होना चाहिए, बोला बोलते थे ना,
1: अभी आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
0: पहनना और एक खाना दोनों अपना छुपा के होना चाहिए, किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्या आपने अंदर अपने पहना हुआ है।
1: और अभी आपने प्रदीप जी जो अपनी बात में ये बात कही थी ना कि पुराने दौर की बात की थी, तो आजकल आपने देखा होगा रील्स बन रही है 80s के दौर की,
0: है ना,
1: तो भाई 80s का दौर अब आ गया है, तो 80s के दौर के थैले भी अपना लो,
0: अपना लो। देखिए एक बात और है पुन साहब
1: जी, जी जी,
0: माँ का ये कहना है कि चक्र वापस वहीं आना है
1: जी,
0: जो चले थे जिस जगह से हम वापस हम वहीं पर ही आएंगे
1: जी।
0: अभी आपने देखा होगा जैसे मैं एग्रीकल्चर से कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ एज ए साइंटिस्ट, तो मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा कि जो पिछले 15 सालों में जिन लोगों ने ज्वार बाजरा मोठ ओट्स ये खाना जब बंद कर दिया था, तो वापस भी उसी फूड पर हम लोग आ रहे हैं जिस फूड पर हमारे दादा दादी पर दादा पहले खाया करते, जब गेहूं नहीं हुआ करता था
1: जी।
0: आज हमारे गेहूं देश में गेहूं है, लेकिन आज हम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी आपके बाजरे को ज्वार को मोठ को ओट्स को जौ को इनको हाई लेवल पर प्रमोट कर रही है। इसका कारण यही है कि जो एटमॉस्फेयर है जो जिस तरह का वातावरण है, तो यही चीज मेरा कहना है कि सब लोगों से यही गुजारिश है कि पॉलिथीन का प्रयोग बंद किया जाए और अपने घर से निकलते वक्त थैला लेके जाएं, और ताकि ये एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहे, वातावरण शुद्ध रहे, हमें गंदगी नहीं दिखाई दे, बीमारियां नहीं आए, मेरा तो यही लोगों से गुजारिश है।
1: बिल्कुल, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बंद करना चाहिए हमें।
0: यस यस यस,
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने शायद नाश्ता शायद करना होगा कि कर लिया होगा,
0: कर लिया होगा सर। मेरे सर एक बात और है, मेरे गाड़ी के अंदर ब्रिजा के अंदर जब मैं बैठता हूँ और शाम को जब मैं वापस बैक होता हूँ, पूरे दिन मेरा 720 ही चलता है, 107.2।
1: कमाल कर दिया।
0: इसके अलावा मेरा कोई नहीं चलता, ना मैं गाड़ी चलता हूँ, चाहे मैं कश्मीर जा रहा हूँ चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ के हिसाब से कहीं कहीं पकड़ता नहीं है।
1: बहुत अच्छा।
0: लेकिन अगर मैं पंजाब में हूँ, हरियाणा में हूँ, हिमाचल के अंदर हूँ, तो 107.20 और मेरे घर में भी वही चलता है।
1: देखिए
0: मेरे घर में भी इस वजह से कि मेरी वाइफ ही रहती है, दोनों बच्चे बाहर हैं, लेकिन अभी वो भी सारा दिन हम लोग सुबह रेडियो सुनते हैं, उनको ही वो रेडियो सुनने का शौक है, हमारे रेडियो चलता रहेगा सारे दिन, हमारे रात 11 बजे तक,
1: 11 बजे
0: आपका प्रोग्राम ऑफ होता है, हम 11 बजे तक रेडियो सुनते हैं हमारे।
1: ये बातें करके आपने तो हमारा दिल जीत लिया।
0: और जब आप आते हैं स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी, सो हैप्पी, मुझे ऐसा लगता है वास्तव में बहुत अच्छा है। आपका संडे को आप नहीं थे मेरे ख्याल से, कल कोई और थे, वो दूसरे थे, तो कल मैंने ट्राई भी किया, फिर बाद में वो मीनाक्षी कालिया जी।
1: अब हम प्रदीप जी अपनी बातों को विराम देंगे,
0: ठीक है सर, आप औरों को
1: क्योंकि हमारे अगले श्रोता नाराज हो जाएंगे।
0: ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।
1: आपके मन की जो भावनाएं हैं उद्गार हैं मैं समझ सकता हूँ।
0: ठीक है सर, थैंक यू,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।

0: वेलकम बैक दोस्तों। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में आज का टॉपिक है प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताएं, जगह का नाम बताएं।
1: सर नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सेक्टर 51 से। सर
0: जी वेलकम, सुरेंद्र जी नमस्कार।
1: हाँ जी सर,
0: कहिए कैसे हैं आप, क्या हाल है आपका? आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है?
1: मैं आज के विषय में ये कहना चाहता हूँ सर कि थैला जो है, थैला कितना सुंदर चीज है। जब आप बाजार लेके जाते, शाम से जाइए, वो स्टील वाले थैलों का रिवाज था किसी जमाने में, तो कोई डर भी नहीं होता था कि किसी चीज के खराब होने का, बेफिक्र होकर जाते थे। आज वो जमाना थोड़ा सा बदल गया फैशन का, तो फैशन तो अपनी जगह रहेगा ही सर, लेकिन चीजें सुरक्षित रहेंगी और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
0: और सुरेंद्र जी आजकल तो फैशन भी 80s के दौर में वापस लौट रहा है, लौट ही चुका है, तो हो सकता है कपड़े का थैला उस दौर का वो भी सामने आ जाए।
1: जी जी,
0: बनाइए इसकी रील कोई अच्छी सी, अपने दौर के कपड़े के थैले की अपलोड कीजिए।
1: कपड़े के थैले से सर एक तो बीमारियां नहीं होंगी जो के प्लास्टिक से होती है, तो जब भी हम बाजार जाएं तो लेकर चले थैला और प्लास्टिक को नो कहें, तो ये सबसे काम है हमारा पहला।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है। सुरेंद्र जी मैंने तो प्रोग्राम के आपसे बातचीत करने के शुरुआत में आपका हाल चाल पूछा था, आपने बताया नहीं, कैसे हैं आप?
1: मैं सर बस आपकी दुआ से ठीक हूँ। अभी अभी प्रदीप जी ने बताया था कि जब आपसे बात होती तो मन को खुशी हो जाती थी, हमारा दिल दुगना खुशी से भर जाता है सर।
0: चलो खुश रहने की कोई ना कोई,
1: आपको इतना मतलब इतना रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी आवाज मिल जाती है तो हमें बड़ा सुकून मिलता है सर। सभी सज्जन बहुत अच्छे हैं परिवार के, आपके आकाशवाणी के, लेकिन आपसे मुलाकात होती है तो और खुशी होती है।
0: बहुत अच्छी बातें आप सब करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और हमें क्या चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। फिलहाल आपको एक बार फिर बता दें, इस प्रोग्राम में बातें करने के लिए, अपने विचार साझे करने के लिए हमारे नंबर्स 2660615, 2660617 और 2660619, ये हमारे तीन नंबर्स हैं प्रोग्राम के लिए, फ़ोन इन प्रोग्राम्स के लिए। इसमें से किसी एक नंबर को आपने मिलाना है और मिलते ही आपसे हमारी बात हो जानी है और इस टॉपिक के बारे में आपने अपने विचारों से हमें अवगत करवाना है। तो इस समय आप हमें अपने रेडियो सेट के साथ साथ हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहां फिलहाल रुकते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो, ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक

0: आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
1: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
0: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
1: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: तो प्रोग्राम के प्रायोजक तो यहीं तक हमारे साथ, लेकिन प्रोग्राम का सफर जारी है। अभी मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
4: गणपति बप्पा।
5: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
6: अरोड़ा प्लाईवुड,
7: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
6: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
8: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका। जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 5-25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
3: 10:37 हो चुके हैं, प्रोग्राम जारी है। हेलो चंडीगढ़, और बारी है हमारे अगले श्रोता की। हेलो चंडीगढ़, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी
9: सर नमस्कार।
3: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
9: सर प्रदीप बोल रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
3: जी प्रदीप जी वेलकम, कैसा मौसम है आपके यहाँ?
9: सर मौसम तो बिल्कुल, आज धूप खिली हुई है, बिल्कुल हल्की हल्की हवा चली हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम चला हो सर शिमला का।
3: आप जाखू से बोल रहे हैं?
9: मैं सर संकट मोचन।
3: जी जी, तो बताइए आज के प्रदीप जी टॉपिक के बारे में।
9: सर मैं तो यही कहूंगा कि सभी को पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर हमारी संपदा पर्यावरण सुरक्षित है तो तभी हम भी खुली हवा में सांस ले सकते हैं। पर्यावरण को सर बचाने के लिए हमें कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक जो है सर वो हमारे लिए और पर्यावरण के लिए भी घातक है।
3: जी,
9: और सर ये जो प्लास्टिक के खाली बैग हम सड़कों पर फेंक देते हैं ना सर, या उसमें कूड़ा वगैरह, तो वो जानवर जो वहाँ पे होते हैं वो उसको खा लेते हैं सर
3: जी,
9: जिससे उनको भी मतलब काफी इससे नुकसान हो सकता है। और जब हम सर ये प्लास्टिक को नदी नालों में फेंकते हैं तो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह होती है, वो उनके गले में फंस जाता है सर ये प्लास्टिक
3: जी।
9: तो हमें जो है ये मतलब प्लास्टिक को वैसे तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और अगर है भी तो फिर उसको मतलब अच्छी तरह से उसको नष्ट करके उसको मतलब मिट्टी में मिला के वो कर देना चाहिए सर
3: जी। तो प्रदीप जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जब हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत में हम साफ सफाई की बात करते हैं, हरा भरा बनाने की बात करते हैं, हरियाली की बात करते हैं, लेकिन उस हरियाली को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें उस हरियाली में से प्लास्टिक को तो भी बाहर करना है।
9: हाँ जी,
3: वो तभी हम करते हैं, कर सकते हैं जब हम छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें, जैसे अपने घर में कपड़े का थैले का इस्तेमाल करें। क्या आपके घर में कपड़े का थैला इस्तेमाल होता है?
9: हाँ सर, वो एक्चुअली ऐसा है ना, कभी कभी हम जैसे प्लास्टिक के बैग में कुछ सामान लाते थे तो कभी ऐसा होता था कि वो रास्ते में फट जाता था, तो सामान जो इधर उधर फैल जाता था।
3: जी बिल्कुल सही है, बड़ी सिचुएशन खराब होती है।
9: बिल्कुल सर, वो फिर पता क्या, वो एक चीज इधर जा रही है दूसरी उधर गिर रही है, तो उसको उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता था।
3: हाँ, आपके आलू प्याज जो है सड़क पे बिखर गए हैं।
9: वो बिल्कुल सर, वो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं फिर, वो ना
3: किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को उठाएंगे।
9: सर एक को पकड़ेंगे तो दूसरा आगे वो हो जाएगा,
3: तो इसलिए जब
9: पहुंचते जो है ना सर वो प्लास्टिक के खाली पहुंचता है।
3: तो इसलिए जब कपड़े का थैला साथ होगा तो फिर वो कहीं नहीं हिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।
9: हाँ सर, कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा सामान गिरेगा या कुछ ऐसा होगा ना, क्योंकि वो सर मजबूत होते हैं कपड़े के बैग ना
3: जी। तो प्रदीप जी आपका धन्यवाद करते हैं बात करने के लिए।

0: માં છે?
1: બઢિયા.
2: ગણપતિ બપ્પા.
3: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता. इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर. वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां.
4: स्वागत है दोस्तों प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में अपने रेडियो सेट के साथ साथ. इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप ये लाइव फोन इन प्रोग्राम सुन रहे हैं. और ये प्रोग्राम आप अपने रेडियो सेट पर हमारे कसौली ट्रांसमीटर

0: से भी सुन रहे हैं। तो आइए अब आगे बढ़ें और बात करें अगले श्रोता के बारे में। फिलहाल तो कोई पहुंचा नहीं है और बात हो रही है कि प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। एक कुछ छोटा सा कपड़े का थैला जब हम खुद तैयार करते हैं या बाहर से तैयार करवा लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक तो हमें बाज़ार में शॉपिंग करना आसान हो जाता है, एक ही थैले में ना जाने कितनी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि प्लास्टिक की थैली हमें हर एक आइटम के लिए, हर एक थैली जो है वो पकड़नी पड़ती है। कई बार हमें यह गिनना पड़ता है कि जो हमने लिया वो क्या कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं रह तो नहीं गया। लेकिन अगर थैला साथ होगा तो भाई एक ही थैले में वो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो थैले का बहुत फ़ायदा है। फिलहाल बातें जारी रहेंगी, हमारे एक श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो चंडीगढ़, आते आते फिर लौट गए हैं हमारे श्रोता। नंबर्स नोट कर लीजिए, 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं 51 से बोल रही थी।
0: जी लक्ष्मी जी, वेलकम।
1: हाँ जी सर, थैला तो अभी मैंने कल ही एक थैला सिला है।
0: अच्छा।
1: हाँ। और मैं सिलती हूँ सर, मैंने गाड़ी में भी रखा है। हाँ। एक एक्टिवा में भी रखा हुआ है, और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड साइकिलिंग करते हैं सवेरे, तो मैंने उनको भी एक छोटा सा बना के दिया कि आप इसको पॉकेट में रखो और आपने बिल्कुल भी कोई भी पॉलीथीन नहीं लेना।
0: क्या बात तो, है, सलाम करते हैं आपको।
1: सर मेरे बच्चे भी बहुत जागरूक है, क्योंकि अगर मैं जाती हूँ सब्जी लेने तो वो कहते हैं मम्मी सारी थैले में ही डलवाओ, घर पे भी जो तो जाके आपने उनको इकट्ठा ही करके धोना है। तो इतना पॉलीथिन घर पे लेके जाओगी, ये बहुत बेकार है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि जब हम खुद थैली के लिए, प्लास्टिक के लिए जब हम नहीं कहेंगे दुकानदार को या सब्जी वाले को या फल विक्रेता को, तो वो अपने आप ही नहीं रखेगा। क्योंकि आमतौर से जब उनसे पूछा जाता है कि आप ये थैली क्यों रखते हैं, तो उनका अक्सर ये जवाब होता है कि जी क्या करें, कस्टमर नाराज हो जाता है। वो मांगता है छोटी छोटी चीज के लिए मांगता है।
1: हाँ जी सर,
0: 250 ग्राम चीज के लिए भी उसको चाहिए।
1: हाँ जी सर, हाँ जी सर, तो यही है कि हम लोग खुद उनसे कहते हैं कि आप हमें दो, गलती उनकी नहीं है सर, पहले हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए, अपने ऊपर अपने साथ लेके जाएं, वो सब करें। और इससे सर पॉलीथीन जमीन में अगर गाड़ दो, वो वैसे का एज इट वैसे ही निकलता है सर
0: जी
1: उसका। हाँ जी सर, हमारा ये पर्यावरण भी उससे सुरक्षित नहीं है सर, इस सब के लिए तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी।
0: अच्छा लक्ष्मी जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी गाड़ी में एक थैला रखा हुआ है, अपने स्कूटर में रखा हुआ है।
1: हाँ जी
0: और
1: सर।
0: फिर आपने अपने साहब को भी एक थैला पकड़ा दिया, थमा दिया कि ना। हाँ जाने रास्ते में क्या मिल जाए अच्छा खरीदने के लिए, कोई फल मिल जाए। हाँ। सब्जी मिल जाए तो हाँ फौरन ये थैला काम आ जाएगा।
1: हाँ जी सर,
0: प्लास्टिक की थैली कहाँ लटकाएंगे साइकिल में।
1: हाँ जी,
0: अगर झटके से गिर गई तो सारा जो खेल है वो खराब हो जाएगा।
1: हाँ जी सर, ऐसा था ना, एक बार शुरू शुरू में वो था, उसमें ना चिन्नी लेके आ रहे थे, वो तो हैंडल पे रह गए, चिन्नी सारी नीचे गिर गई। तो मैंने कहा देखो इसमें तो हमारा ही नुकसान है, और तब इसमें ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है सर।
0: जी जी जी बिल्कुल सही है।
1: हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर।
0: थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी जी।

0: एक श्रोता ऑनलाइन आ चुके हैं। हेलो चंडीगढ़
1: जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। रामवीर जी, रामवीर जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, रामवीर बोल रहे जी, गांव खिरमत से, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से
0: जी। रामवीर जी क्या कहना चाहेंगे?
1: जो आज का विषय है उसी के बारे में कहेंगे जी।
0: उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जी।
1: हाँ जी, प्लास्टिक की बजाय अगर हम कपड़े का थैला रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। इससे हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा और साथ में हमारा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब प्लास्टिक की थैली कहीं भी बनती है तो इसमें एक

0: इस्तेमाल होता है सर, चाहे हम नई थैली लेकर इसको धोएंगे तो इसमें कलर भी कच्चे होते हैं, जैसे हमने कोई खाने पीने की चीज दही वगैरह दूध वगैरह लेते हैं तो इससे जो उसके अंदर जो केमिकल पाउडर होता है वो उसी में मिक्स हो जाता है सर।
1: हाँ।
0: तो दूध लेने जाएं तो अपना बर्तन लेके जाएं, क्योंकि ये जो थैलियां है ये नुकसानदायक है और कैंसर का कारण तक बन सकती है सर।
1: जी जी जी, तो जी, जी।
0: इसका नुकसान ज्यादा है।
1: नहीं रामवीर जी, ये बताइए कपड़े का थैला आपने भी अपने घर में बनवाया है कि नहीं है?
0: हाँ जी हाँ जी, हम इस्तेमाल करते हैं जी, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, वैसे मेरे पास तो थैले वैसे भी फालतू होते हैं सर, लेकिन मैं थैला ही लेकर जाता हूँ जब भी कहीं।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है रामवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम में हमारे अगले श्रोता जो हैं वो पहुंच चुके हैं, इनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में आपका स्वागत है जी। हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में
1: जी, नमस्कार
0: जी, वेलकम जी। नाम बताएं, जगह का नाम बताएं।
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूं सर।
0: सतपाल सिंह बिंद्रा जी,
1: जी।
0: कभी कभी आप प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू शुरू में पहुंचते हैं, कभी बिल्कुल आखिर में। कभी आप ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, कभी क्लोजिंग करते हैं।
1: हाँ जी जी।
0: अच्छा बताइए, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो सर प्लास्टिक की जो समस्या है बहुत बड़ी है।
0: नहीं नहीं प्लास्टिक तो हम बात ये कर रहे हैं कि प्लास्टिक को हटाने के लिए कपड़े का थैला अपनाएं।
1: जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। कि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो नष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए सर मैंने एक दिन मेहनत करी कि कपड़े का थैला ऑनलाइन ढूंढा।
0: अच्छा।
1: इसमें लिखा जाए कि लिखा हुआ हो कि से नो टू प्लास्टिक।
0: हाँ हाँ।
1: वो मैंने मंगवाया ऑनलाइन और अब मैं वही कैरी करता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अगर हम इस वक्त टीवी पर होते, टेलीविजन पर होते
1: जी,
0: तो आपका वो थैला जरूर दिखाते।
1: तो वो सर उसमें एक संदेश भी जाता है लोगों को, दुकानदारों को,
0: जी
1: सब
0: जी,
1: कि प्लास्टिक का यूज ना करें और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है सबसे ज्यादा खतरनाक है।
0: बिल्कुल खतरनाक है, बहुत खतरनाक है।
1: जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है सर प्लास्टिक की वजह से कम हो रही है। और जमीन जो हमारी धरती है पानी को कम अपने अंदर सोख पा रही है।
0: जी ये बहुत अच्छी बात हमें लगी कि आपने पूरी इस मामले में मेहनत की। कपड़े का थैला आपने ऑनलाइन ढूंढा और वो ढूंढा जिस पे लिखा हुआ था से नो टू प्लास्टिक। हाँ बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आजकल पुराने दौर का फैशन फिर से शुरू है। बहुत सारी सोशल मीडिया पर रील्स ऐसी बन रही 80s के दौर की। तो 80s के दौर में तो बड़े प्यारे प्यारे थैले भी इस्तेमाल होते थे।
1: अभी तो सर जूट का इतना अच्छा प्रचलन, जूट खादी को गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया है कि सुंदर

0: अंदर चीजें थैले और भी उससे कपड़े पहनने वाले कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जो टेरिकॉट नायलॉन से काफी अच्छे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल जी बात करने के लिए प्रोग्राम में।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: और दोस्तों धीरे धीरे अपनी आदत से जब हम प्लास्टिक को ना कहेंगे तो ये अपने आप हमारे जीवन से बाहर हो जाएगा। जब हमारा इससे लगाव इससे जुड़ाव जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और जब हमें चाव चढ़ेगा कपड़े के थैले का तो फिर बात ही निराली होगी।

0: अब दोस्तों आज का ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज हमने प्लास्टिक हटाएं, कपड़े का थैला अपनाएं और पर्यावरण बचाएं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपने अनुभव इस मामले में साझे किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया, अब अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
2: हेलो चंडीगढ़।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन, आज ही खरीदे। 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने सुहाने का। इस संदेश के बाद मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम में।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते

हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव की हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

श्रोताओं, गाने सुहाने कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी हमसफर मोनिका ठाकुर, और कार्यक्रम का पहला गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम है क्रिमिनल, संगीत दिया है MM करीम ने।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोताओं, आप आनंद उठा रहे हैं गाने सुहाने कार्यक्रम का। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण, साधना सरगम की आवाजों में, फिल्म का नाम है सुहाग, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: लता मंगेशकर, कुमार शानू की आवाजों में ये गीत आपने सुना, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म से। संगीत जतिन ललित का।
1: साफ सफाई अपनाएं, बीमारी को दूर भगाएं।

0: जुबिन की आवाज़ में प्यार के साइड इफेक्ट फिल्म का गीत आपने सुना, संगीत था प्रीतम का।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
2: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा रहे हैं और अब आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत, संगीत है जतिन ललित का।

0: साग और ल्योदूर चमन।
1: तो ये हाग साग जो है ना कुछ कुछ पालक से मिलता जुलता साग होता है, लेकिन बनाने की विधि सबकी थोड़ी अलग होती है। तो हमारे श्रोता वो हमें भेज रहे हैं इसकी रेसिपीज, वो हम बाद में सुनेंगे और पढ़ेंगे इसे, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।
0: हाँ।

0: ये बहुत सुंदर गाना था ना,
1: हम्म,
0: और बहुत दिन बाद जब ऐसा गाना सुनते हैं ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत दिन पहले गाना मैंने सुना था और कहते हैं ना कि हम भूले नहीं इस गाने को,
1: जी
0: और आज याद आई तो हमने लगा दिया।
1: तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने, हमें भी याद दिला दिया जो हम तो भूल ही चुके थे इस गाने को, या
0: देखो
1: कहें कि हमें तो पता नहीं था इसके बारे में।
0: और क्या होता है जब कोई चीज़ हम किश्तों में सुनते हैं ना, इनकी एक भाग सुना ना सुना दूसरा, तो वो अधूरापन सा रह जाता है। इसी तरह
1: हाँ
0: से कोई कहानी है, आधी सुन ली हो आधी ना सुने, तो वो बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की कि आगे क्या होगा। तो कथा सुधा में जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है, बड़े भाई साहब पहला भाग, तो
1: जी
0: उन्हें उत्सुकता है इसका दूसरा भाग सुनने की। तो देर नहीं लगाते हैं, सुनवा देते हैं कहानी।
1: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन

0: सज्जन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना,
2: अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
3: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
2: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
1: आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
2: लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उभर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन डाले। मैं और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे।

0: लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वो मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस समय अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब कि भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग्गे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले,
1: अरे रे रे, इन बाजारी लाउंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौओं के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजर्बा है। चाहे तुम एमए, डीफिल और डीलिट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है?

0: है और आठवें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराएं न बदहवास हो। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का महीने भर कैसे चले। जो दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ कमाया है और कुटुंब का पालन किया, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपया पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्चा पूरा ना पड़ता, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, ये जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।
1: मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, जी हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले,
0: कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है।
1: संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक झुंड पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: नेहा, अभी हम सुन रहे थे कथा सुतामय बड़े भाई साहब कहानी का दूसरा भाग, और आज विश्व अल्जाइमर दिवस है।
1: जी
0: तो हमारे सुनने वाले भी बताएं कि क्या उनके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं और वो उनकी इस चीज़ को देखा अनदेखा कर रहे हैं। हमारी सखियां अक्सर कई बार अपनी चीज़ों के साथ में बहुत चीज़ों को हल्के में लेती हैं,
1: हाँ।
0: और जब हल्के में हम चीज़ों को लेते हैं तो आगे चलकर वो कोई बड़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल हम सुन लें एक गीत।
1: जी
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर कार मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना

0: नेहा, अभी हमने सुना सीआईडी फिल्म का गाना जिसमें आवाजें थी आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: ठीक।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
4: हम सबका यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना।
2: गणपति बप्पा
5: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली।
3: और हमें तो याद है ये सारी चीज़ें, और हमें ये भी याद है कि आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी जो भूलने की बीमारियां हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करें और इससे जुड़े जो डर हैं उन्हें खत्म किया जाए।
2: बिल्कुल, कोई भी बीमारी या समस्या उसके नाम से ना डर सबसे पहले आ जाता है। तो ये जागरूक हो जाएं लोग और उसे डरे नहीं, उसका उपचार कैसे करना है और इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होती है। और 1994 में इस दिन की शुरुआत हो गई थी। अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल यानी कि ADI नामक एक संस्था है, उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ पर पहली बार इस दिन को मनाया। 2012 से पूरे सितंबर महीने को ही वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के रूप में भी हम मनाते हैं।
3: हाँ, और अल्जाइमर या डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार है अल्जाइमर जो है। WHO के अनुसार दुनिया में करीब 55 मिलियन से ज्यादा लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं और इसमें लगभग 60-70% मामले अल्जाइमर के ही हैं। और एक बात के तौर पर अगर हम बताएं तो हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले इसके सामने आते हैं। और इस समस्या को सामने आने पर दिमाग में बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जमा होने से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इसका ही नतीजा होता है कि याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है।
2: बिल्कुल, और ये महिलाओं के साथ में मैंने भी जो हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, घर की ही महिलाएं हैं, कईयों से सुना है कि धीरे धीरे ना चीज़ें वो भूलने लगती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर हल्के में ले लेंगी तो वो समस्या बड़ा रूप ना ले। इसीलिए इसके बारे में चेत जाना पहले से ज़रूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान में चेत जाना पहले से जरूरी होता है। और जब हम ये दिन मनाते हैं जागरूकता के लिए तो हर साल कोई ना कोई एक थीम भी होती है और इस साल जो थीम रखी गई है वो है द अर्लियर यू नो द मोर यू कैन डू डिमेंशिया डायग्नोस मैटर्स। इसका मतलब है कि जितना जल्दी आपको पता लगेगा उतना जल्दी आप कर पाएंगे। और ये थीम नेहा इसलिए भी रखी गई है क्योंकि इस साल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि समस्या का निदान जल्दी होने पर इसका इलाज, देखभाल और सहयोग सही समय पर जो भी पीड़ित है उनको मिल सके।
3: और वाकई अगर किसी शुरुआती लक्षण में ही जब हम पहचान लेते हैं तो जल्दी आसानी से हम उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो नजरअंदाज ना करें, जैसे कि हाल में ही बातें बार बार आप भूलने की आपको ऐसी आदत नजर आ रही, रोज के काम करने में भी

0: टोल ज़्यादा बढ़ाते हैं। दिमागी कसरत की चीज़ें होती हैं जैसे किताबें पढ़ना या वर्ग पहेलियाँ जो आती हैं, अलग अलग तरह की पहेलियाँ हल करना, तो ये सारे उपाय हम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कर सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल है, तो इन्हें कंट्रोल में रखने की भी हम अगर कोशिश करते हैं तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। साथ ही अगर हम अच्छी नींद लेते हैं और अपने तनाव को कम करते हैं तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है।
1: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि ये जो दिन हम मना रहे हैं इसका संदेश भी यही है कि भूलने को उम्र का कोई सामान्य हिस्सा नहीं समझे, कि
0: जी
1: भाई उम्र बढ़ रही है तो ये समस्या आनी ही है, ऐसा नहीं है। इसकी जल्दी अगर पहचान कर लेते हैं, सही जानकारी हो इसकी, तो परिवार का प्यार अगर हमें मिलता है तो वही इसकी सबसे बड़ी दवा है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक
1: और
0: साथी ने लिखा है कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल ADI की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। और आगे उन्होंने बताया कि नामकरण इस मानसिक बीमारी का नाम जर्मन मनोचिकित्सक और न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1901 में पहली बार एक महिला में इस विकार की खोज की थी।
1: इसी तरह से एक और संदेश हमारे पास आया है। इस संदेश में लिखा गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये तो शांति दिवस के बारे में, तो जब शांति
0: हाँ
1: की बात करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे।
0: बिल्कुल। अभी तो हमने अल्जाइमर के बारे में बात की, और भूलने की जो समस्या है अक्सर तब भी आने लगती है जब हम ज्यादा
1: जी
0: ध्यान नहीं देते
1: तो देखियो ना, मैं भी भूल
0: हैं।
1: गई कि हम बात कर रहे थे अल्जाइमर डे के बारे में
0: जी
1: और शांति दिवस का संदेश में पहले पढ़ने लगी, तो ये भूल ना हो पहले गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: तो भाई बहुत शांति है ना अभी स्टूडियो में समय।
1: हाँ, और ये गाना अगर ऐसे गाने सुने तो मन में कितनी शांति लगती भी है, और एक अच्छा मौका भी है शांति का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है आज, और 21 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित ये दिन है, जिसका एक ही संदेश है कि युद्ध को नहीं, शांति को चुनो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कहना है कि शांति एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली ताकत है, और ये हमारी पहुंच में है अगर हम इसे चुनते हैं तब।
0: बिल्कुल, यानी कि अगर हम क्रोध नफरत को चुनना चाहें तो उसे भी चुन सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन अगर एक बेटर और बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एक अच्छा विकल्प हम चुनते हैं, तो वो
1: हाँ
0: शांति ही हो सकता है। और 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की। 2001 में महासभा ने सर्वसम्मति से 21 सितंबर को वैश्विक युद्ध विराम और अहिंसा के दिन के रूप में इसे घोषित किया। इस दिन सभी देशों और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम ये अपील करते हैं कि 24 घंटों के लिए ही सही, लेकिन इस चीज़ को, यानी कि जो हिंसा है उसे रोकने की
1: हाँ
0: कोशिश वो ज़रूर करें, अपने आप से जो कोशिश उनसे हो सकती है।
1: हाँ और जैसा कि हमने बताया कि हर वर्ष कोई थीम होती है हर दिवस
0: हाँ,
1: की, तो इस वर्ष की शांति दिवस की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि अगर आपको शांति प्रिय एक विश्व चाहिए तो उसके लिए अभी प्रयासरत होना होगा।
0: जी
1: और ये थीम याद दिलाती है कि शांति अपने आप नहीं आती, इससे बनाना पड़ता है, साहस, समझौते और कार्रवाई से।
0: और ये कार्यवाही भी हमें ही करनी होती है, कोई और आके काम नहीं करेगा। और शांति का मतलब केवल युद्ध को रोकना या युद्ध नहीं करना ये नहीं होता,
1: हाँ
0: इसका अर्थ है कि न्याय, समानता, मानवों के अधिकार, सबका सम्मान, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और इसीलिए विश्व शांति का महत्व, इसको अगर हम समझेंगे तो सबका सहयोग और सबका योगदान होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे, कोई भी काम अगर सब मिलकर करते हैं तो ही सफलता हासिल हो सकती है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास और शांति एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के 10 सबसे कम विकसित देशों में से ज्यादातर किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो जहां शांति होती है वहां परिवार जुड़ते हैं, समुदाय फिर से बनते हैं, और बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, खेल पाते हैं।
0: और जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, तभी तो उस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल बनेगा।
1: जी
0: और इस दिन जो है, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं विश्व शांति दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस की, तो इस दिन न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पर पीस बेल, यानी कि शांति का घंटा, वो बजाया जाता है।
1: जी
0: और ये घंटा दुनिया भर के लोगों द्वारा जो दान किए गए सिक्के हैं या पदक हैं उनसे बनाया गया है। इसके अलावा दुनिया भर में शांति दिवस पर शांति मार्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, स्कूलों में वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, अंतरधार्मिक संवाद आयोजित किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो इस तरह से जो सफ़ेद कबूतर होते हैं ना,
1: हाँ
0: शांति का प्रतीक माना
1: जी
0: जाता है, उन्हें भी उड़ाते हैं।

0: और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि शांति हम सबका काम है। नफरत से भरे शब्द ना बोलें, अपने आसपास सम्मान की भाषा बोलें, सबको समान भाव से देखें, फर्जी खबरें जो होती हैं उन्हें फैलाने से रोकें। और शांति का मतलब कोई बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है चंचल जी, क्योंकि छोटे छोटे रोज़ के अगर हम कदम उठाते हैं तो उससे ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जैसे दूसरे को सुन लें, दूसरे को समझें, और कोई हिंसा अगर करता भी तो उसका जवाब हिंसा से ना दें, उन्हें समझने की कोशिश करें, उन्हें समझाएं किसी तरह से। अगर वो
1: जी,
0: मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
1: तो आपने कहा दूसरों को सुने समझें,
0: हाँ
1: तो भाई हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है और लगता है इसीलिए मेरा ऑफिस जाने से पहले तक सखी सहेली यानी सखी यानी मेरी धर्म पत्नी शांति बनाए रखी हैं और मेरी क्लास लेते हुए लेक्चर उन्होंने नहीं दिया है। काश हर रोज अलग अलग शांति दिवस हो।
0: हमें तो लगता है कि इन्होंने भी हमारी सखी को तंग करने का कुछ आज प्रयास नहीं किया होगा,
1: जी
0: इसी वजह से ये शांति बनी हुई है। क्योंकि जब कहते हैं कि एक कार्य क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, तो वो
1: बिल्कुल सही कहा
0: प्रतिक्रिया
1: आपने
0: नहीं आई क्योंकि क्रिया शायद नहीं हुई है आज,
1: जी।
0: तो ऐसा वो भी बनाए रखे शांति ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम के रोचक विषयों को पढ़ा तो पता चला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, मगर हमारे घर में आज सुबह से ही बर्तन बजने शुरू हो गए। देखिए प्रतिक्रिया हो रही है
1: जी
0: क्रिया की, और वो कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी और मेरी सुबह सुबह ही दूध लेने जाने की बहस शुरू हो गई। मैं मस्त था, सुरीला सफर कार्यक्रम के संभावित शब्दों से गीत सोचने में बड़ा व्यस्त था। घर में दूध ना होने के कारण चाय नाश्ते में देरी हो रही थी। शांति दिवस के मौके पर हम दोनों पति पत्नी ने घर में वो अशांति फैलाई कि बच्चे भी देख देख कर हंस रहे थे। बच्चों को हंसता देख मैंने पत्नी के सामने सरेंडर किया, डोलची उठाई और चुपचाप से दूध लेने चला गया। दूध आने के बाद फिर सबने हंसी खुशी चाय नाश्ता किया और अशांत हुआ घर का वातावरण एक बार फिर से शांति वाले माहौल में तब्दील हो गया। तो आप सबको हमारी ओर से एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुभकामनाएं और ढेरों बधाई।
1: हम भी सबको शुभकामनाएं देते हैं और
0: जी
1: ऐसा हंसी खुशी का वातावरण सभी के घर में बना रहे। सुनते हैं ये गीत।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: चंचल जी, मैं भी ये सोच रही थी कमेंट पढ़ते हुए कि हमारे साथी ने कहा कि वो दूध की वजह से जो लड़ाई हुई उसमें उन्होंने देखिए हमारा नाम भी साथ में लिया। उन्होंने कहा कि विविध भारती की जो सुरीला सफर की जो पोस्ट आई थी उसकी वजह से वो गाने सोच रहे थे और नहीं जा रहे थे ना। तो हम तो ये कह रहे कि रास्ते में भी सोचते सोचते जा सकते थे, है कि
1: बिल्कुल
0: नहीं?
1: सही बात है। आप जब जा रहे हैं दूध लेने तो
0: हाँ
1: रास्ते भर उन शब्दों को अपने जहन में रखते हुए जाइए, और जब आ जाएंगे तो इत्मीनान से वो सारे गाने लिखकर आप पोस्ट पर डाल सकते हैं।
0: हाँ
1: चलिए फिलहाल हम बात करते हैं ल्योदुर चमन की, जो कि एक कश्मीरी व्यंजन है।
0: हाँ
1: और ल्योदुर चमन का मतलब होता है ल्योदुर मतलब होता है पीला, और चमन का मतलब होता है पनीर। और इस रेसिपी की खास बात यही होती है कि इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी बहुत ही साफ सुथरी, कहते हैं ना कि मीठी सी रेसिपी होगी जिसमें तीखापन ज़्यादा नहीं
0: कुछ भी
1: होता।
0: नहीं डालते, मसाले कुछ नहीं डाल रही, क्या बात है भाई।
1: इसमें जो ग्रेवी है वो दूध, सौंफ, सौंठ इस तरह के मसालों से बनाई जाती है। तो सामग्री इसके लिए चाहिए 300 से 400 ग्राम मोटे चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ पनीर, और 1.5 से 2 कप फुल फैट वाला दूध, यानी कि जिसमें मलाई होती है
0: मलाई
1: वैसा वाला
0: जी,
1: दूध। सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 बड़े चम्मच, वो चाहिए हमें पनीर तलने के लिए और ग्रेवी के लिए। हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंठ पाउडर 1 छोटा चम्मच, हींग चाहिए 1/4 छोटा सा चम्मच, स्याह जीरा चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, खड़े मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और नमक स्वाद के अनुसार। अब पनीर को पानी में उबालने और भिगोने के लिए पानी चाहिए। पनीर को उबालने के लिए और भिगोने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी चाहिए, यानी कि 1 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए पनीर को तैयार करना है। एक बड़े बर्तन में पानी को उबालें, उसमें 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। पनीर के टुकड़ों को इसमें डालकर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से निकालकर सुखा लेना है। अब
0: जी
1: एक कढ़ाई में सरसों का तेल तब तक गर्म करना है जब तक उसमें से अच्छा सा धुआं ना निकलने लगे। आँच को धीमा करके पनीर के टुकड़ों को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेना है। तले हुए पनीर के टुकड़ों को कढ़ाई से निकालकर तुरंत एक बर्तन में जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी हो उसमें डाल देना है। ऐसा करने से पनीर रबड़ की तरह खिंचा हुआ नहीं होता बल्कि नरम और स्पंजी रहता है।
0: ओके
1: और ग्रेवी का तड़का तैयार करने के लिए कढ़ाई में बचे जो तेल बच गया है उसी को थोड़ा सा गर्म करना है, और इसमें अगर कम लगे तो आप तेल और छोड़ दीजिए। और इसमें जीरा, हींग, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची ये सारे मसाले एक साथ डाल देने। कुछ सेकंड जब ये मसाले चटकने लगेंगे और इसमें इनकी खुशबू आने लगेगी तब आँच को धीमा करना है, गैस बंद कर देनी है। इसमें हल्दी पाउडर, सौंठ पाउडर और सौंफ पाउडर डालना है। सूखे मसाले ना जलें इसके लिए तुरंत इसमें 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल देना है।
0: जी
1: दूध को अब इसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद में दूध डालना है, और जब दूध डालेंगे तो कलछी से लगातार चलाते रहना ताकि दूध वो फट ना जाए। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आने लगे तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। जो भीगा हुआ पनीर था उसको हाथों से निचोड़ कर इस उबलती हुई ग्रेवी में डाल देना है, और कढ़ाई को ढक देना है। धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देना है। पनीर जब सभी ग्रेवी के साथ में सारे स्वाद को सोख लेगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, घी या तेल जो भी है वो सतह पर तैलने लगेगा, तो ऊपर से 1 चम्मच हल्का सा है तो घी डाल देना है, या मलाई डाल सकते हैं आप, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर फिर गैस बंद कर दीजिए, और गर्मा गर्म ल्योदुर चमन जो है वो तैयार हो जाएगा इस तरह से।
0: फिर भीनी भीनी से खुशबू रहेगी इसमें, ऐसा लगता है ना। और एक हाक साग के बारे में भी आपने बताया था, तो हाक साग को अगर हम बताएं तो कश्मीर का सबसे पसंदीदा और रोजमर्रा के खाने में बनने वाला पारंपरिक व्यंजन है। तो कश्मीरी कोलार्ड ग्रीन्स या हरी पत्तियों का एक साग होता है जो वहाँ मिलता है, और इसके बहुत ही कम मसालों के साथ इसे भी पकाया जाता है ताकि साग का जो स्वाद है वो बना रहे। इसके लिए हाक की पत्तियाँ, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक, बस इतना ही चाहिए। और इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल, जैसे कि आपने कहा, इसमें भी नहीं होता है। ये इसका स्वाद हल्का तीखा और बेहद ताज़ा होता है, तो आमतौर पे इसमें उबले हुए चावल के साथ इसे परोसते हैं और ऐसे खाया जाता है इसे। लेकिन इसको मतलब बस सब्जियों को इसी तरह से बनाया जाता है। सब्जी को आप हल्का सा तोड़ कर या काट कर आप इस तरह से छोंक दीजिए, छोटे जो थोड़ी सी जो हमने सामग्री ली है
1: जी
0: उसमें आप इसको छोंक दीजिए, और बस वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और बस ऐसे कह सकते हैं कि पहले वो जो पनीर की सब्जी है जिसका नाम मैं तो भूल चुकी
1: ल्योदुर
0: हूँ जी,
1: चमन
0: ल्योदुर चमन, और हाक साग बड़ी आसानी से बन जाता है। ये भी जैसे हम भाजी बनाते हैं ना, जो ताज़ी
1: जी
0: सब्जियां जिस तरह से थोड़े से मसालों के
1: हाँ
0: साथ में ऐसा डाल के उसी तरह से इसे पका लिया जाता है। और बस इन सब के साथ में चावल बनाइए और खाइए, आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं।

0: और गर्मा गर्मी सब्जियां बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या होता है ना कि कई बार बहुत तेल मसाले वाला या लहसुन प्याज का कुछ खाने का मन ना हो, तो इस तरह की हल्की फुल्की सब्जियां सभी बनाकर खा सकते हैं। और भाई खुशबू तो फैल रही है जायके की, लेकिन मुझे
1: हाँ
0: लग रहा है कि जो संगीत की मीठी मीठी सुगंध है, खुशबू है, वो भी फैल जाए।
1: बिल्कुल।

0: चंचल जी, हमारे एक साथी ने लिखा कि उन्हें मेरे पति को भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बढ़ती उम्र में होता है, कुछ एक्सरसाइज और रोज़मर्रा के काम नियम करने से बताया है। मैं भी कुछ चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ, किसी समय याद आ जाता है, किसी का नाम या जगह के नाम भी वो भूलती हैं, ऐसा कह रही हैं।
1: तो
0: तो
1: बस
0: अपना
1: आप समय
0: ख्याल
1: पर
0: रखें।
1: उपचार करिए, ध्यान रखिए अपना, और अभी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है तो हम लेते हैं इजाजत। सभी को चंचल वर्मा
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र को। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू विविध भारती मुझे यहाँ बुलाने के लिए। यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला, मेरी आवाज़ इतने लोगों तक नॉट ओनली इन मुंबई बल्कि पूरे भारत में पहुँचेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कम उम्र में आपने हमें इसका मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।
1: तो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है?
2: उम्मीद नहीं किया था कि 40 के पहले मैं यहाँ जाके लोगों से अपना जो भी नॉलेज या जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके बारे में, जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है मतलब किसी भी बीमारी को कैसे रोका जाए उस बारे में बात करूँ, ये सोचा था। बट सोचा था 60-70 की उम्र में इसके बारे में लोगों से बात करूँगा।
1: अच्छा,
2: तो इसके लिए आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले उसके लिए विविध भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा।
1: धन्यवाद आपको कि आप आए और आपने कहा कि बहुत उम्र के बाद आपको मौका मिलता है, लेकिन दरअसल ये दौर बदल रहा है, तकनीक का ज़माना है और मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और बीमारियों ने भी खूब प्रगति की है। बीमारियां नए नए रूप में नए नए नाम के साथ हाजिर हो जाती हैं और समझ में नहीं आता कि मरीज़ क्या करें, कैसे करें, कब करें। अभी डॉक्टर अजीत, इन दिनों एक बड़ी बीमारी है लेकिन कॉमन हो गई है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। जिसको सुनो तो पता चला कि हम फलाना हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक। तो ये ब्रेन स्ट्रोक है क्या और क्यों बढ़ रहा है?
2: तो दो चीज़ें, एक तो बीमारी है क्या और दूसरा जो हम सुन रहे हैं कि इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्चुअली सही भी है। ब्रेन स्ट्रोक, अगर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँ ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, दो प्रकार के स्ट्रोक हैं। एक होता है जिसमें उम्र के हिसाब से जितना ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए तो अगर वो ब्लड नहीं पहुँच पाए तो ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ये एक्चुअल स्ट्रोक है। दूसरा एक होता है जिसमें इतना ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ब्रेन में खून की नस फट गई है, तो ऐसे लेमैन मतलब आम आदमी उसको भी स्ट्रोक बोलते हैं, बट मेडिकल भाषा में उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ब्रेन हेमरेज। तो उसका मुख्य कारण है बीपी बढ़ जाना, बहुत स्ट्रेस है, पहले से बीपी की दवाई चल रही थी, पेशेंट ने खाना बंद कर दिया, कुछ झगड़ा हुआ, टेंशन आया, बीपी बढ़ने के कारण जो नस फटी तो उसके कारण जो खून है वो अंदर ब्रेन के अंदर फट गया पूरा, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। जैसा आपने सेकेंड सवाल पूछा क्या इसका एक्चुअल इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, आंसर इज येस। ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मैं जब बचपन में जब डॉक्टर नहीं था तो हमारे हिसाब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ मतलब पेशेंट का उम्र 60-70 वाले एज में रहेगा, बट अभी ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि 30-35-40 साल की उम्र है और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट होते जा रहे हैं
1: जी।
2: तो उसका कारण हम आगे आप देखेंगे, बट एक कितने लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होते जा रहे हैं इंडिया में, ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख पॉपुलेशन देखे किसी शहर का तो उसमें 150 से 200 लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 में से एक मरीज में हमको ब्रेन स्ट्रोक दिख रहे हैं
1: जी।
2: पहले जो नंबर्स हुआ करते थे वो ऑलमोस्ट 1 लाख में नहीं तो 10-15, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 10 गुना जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। तो सिर्फ बीमारी नहीं

0: बढ़ रही है एक्चुअली। बड़े शहरों में इसका इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अस्पताल ज़्यादा हो रहे हैं, सिटी स्कैन एमआरआई की सुविधा है, न्यूरो की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत बार बीमारी के नंबर्स उतने ही हैं बट वो डायग्नोसिस ज़्यादा होते पा रहा है।
1: अच्छा।
0: तो इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रोक है। पहले काफ़ी बार स्ट्रोक हुआ, पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? हार्ट अटैक आ गया, बट एक्चुअल तो वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ करता था।
1: तो ये तो बड़ी अलग तरह की जानकारी आपने दी कि लोग डायग्नोस नहीं करते थे, तो ये तो अच्छी बात हो गई कि लोग अवेयर हो गए
0: करेक्ट, अच्छी है,
1: हैं।
0: बट उसका एक्चुअल नंबर बढ़ते जा रहे हैं, नो डाउट। मतलब हम स्कैन कर रहे किसी और चीज़ के लिए और उसमें दिख गया है तो स्ट्रोक भी है इनको। फिर बाद में पूछा जाता है आपको कैसे हुआ, तो बोले हाँ हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन काफ़ी कॉमन है, बीपी का प्रॉब्लम हुआ था बट दवाई लेना बंद कर दिए, दिन भर सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम हो रहा है, जंक फूड बोलो खाते जा रहे हैं और चलना या एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक तरह से मेजर कारण है और जिसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप उम्र बढ़ने से स्ट्रोक होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट उसको आप रोक नहीं सकते हो। बट उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं जैसे कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे सॉल्ट और बीपी कंट्रोल करना, इस चीज़ को आप एज अ पर्सन उसको रोका जा सकता है।
1: तो कारण भी एक तरह से आपने बता ही दिया है, लेकिन कई बार आपने कहा जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो आपने कहा कि टेंशन और इस वजह से भी होता है, तो टेंशन और एक कारण और भी है, क्रोध, गुस्सा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि आग बबूला हुए हैं, लाल हुए हैं बिल्कुल,
0: करेक्ट करेक्ट। तो
1: तो ये सब भी कारण हो सकता है
0: वो
1: क्या
0: एक ही
1: जिसको?
0: कारण नहीं है, बट उससे एक है कि बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, रक्त दाब, वो कंफर्म है बढ़ता ही है उस वक्त। तो जितना ब्रेन में खून जाना चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी, और जो ब्रेन की नसें हैं जिसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आर्टरी, उसका जो कैपेसिटी है उस खून को टॉलरेट करने का, प्रेशर
1: जी
0: इतना बढ़ गया कि वो नस फट गई। तो अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं
1: जी
0: और 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: जी
0: बट जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो ब्रेन हेमरेज, जिसमें काफ़ी पेशेंट घर से अस्पताल पहुँच ही नहीं पाते हैं।
1: तो ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चलता है मरीज को कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, होने वाला है?
0: तो ब्रेन का ऐसा है कि हर एक हिस्सा ब्रेन का जो है कुछ ना कुछ उसका एक डेजिग्नेटेड काम है। जैसे अगर दाएं तरफ ब्रेन में कुछ दिक्कत हुई तो उसका जो असर है वो शरीर के बाएं तरफ होगा। जैसे ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो सारे पेशेंट में पूरा हाथ पैर काम बंद कर देगा ऐसा नहीं है, अगर छोटा स्ट्रोक है तो कुछ कमजोरी आएगी। पेशेंट चल रहा है तो उनको लगेगा कि उनका शरीर बाएं तरफ धीरे धीरे स्विंग होते जा रहे हैं।
1: ओहो
0: अगर यही स्ट्रोक ब्रेन के बाएं तरफ आती है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डोमिनेंट ब्रेन, मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं, तो उसमें छोटा स्ट्रोक भी अगर रहे तो दिक्कत ज़्यादा होती है। तो
1: जी
0: उसमें खास करके चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते तो ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हकला के बात कर रहा है, जबान वजन हो जाना, और उसका असर बाएं तरफ का जब स्ट्रोक है तो उससे बात करने के अलावा राइट साइड का हाथ पैर का मूवमेंट कम हो जाता है। तो एज अ डॉक्टर हम देखते हैं कि अगर राइट साइड में स्ट्रोक है तो वो अच्छा है, अच्छा मतलब
1: ठीक है।
0: रिकवरी का जो समय है वो काफ़ी कम रहता है और परमानेंट बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। बल्कि जब लेफ्ट में अगर स्ट्रोक हो तो छोटा स्ट्रोक भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेन को
1: ओ
0: इम्पैक्ट करता है। तो
1: जी
0: कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हो रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा लक्षण जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। लेफ्ट इज़ बैड, राइट है तो स्ट्रोक ओवरऑल ख़राब बीमारी, बट राइट इज़ कंपेरेटिवली थोड़े ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ जाते हैं।
1: तो ये अचानक होता है, शरीर पहले से कुछ संकेत देता है कि ऐसा होने वाला है, जैसे आपने कहा ब्लड सप्लाई ठीक रहे, तो इस सब के लिए कुछ कोशिश,
0: स्ट्रोक
1: प्रयास किया जा सकता है ठीक करने का?
0: यूजुअली ऐसा एकाएक ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं, जैसे मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो यहाँ तो सारी सुविधा अवेलेबल है, सीटी स्कैन एमआरआई, ऑलमोस्ट बम्बई के किसी भी हिस्से में आप देखो 10 मिनट में स्कैन हो ही जाता है। दिक्कत वही है, पेशेंट को जब भी हाथ पैर में दिक्कत हो तो कोई ये नहीं सोचेगा कि ये मुझे ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो। वो क्या सोचेंगे, मेरे सोने का तकिया मैंने चेंज कर दिया, मुझे पैर
1: ओ
0: में मोच आ गई,
1: जी जी
0: उसके कारण
1: जी
0: मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक ही है कि थोड़ा भी डाउट रहे तो तुरंत जाके एक बार न्यूरो से कंसल्ट करवाइए। खुद के लेवल पे जब इलाज करने की कोशिश करो तो दिक्कत होती है कि जो इनिशियली 3-4 घंटे का हमारा गोल्डन पीरियड जिसको बोलते हैं वो समय निकल जाता है। तो ये गोल्डन पीरियड का क्या कंसेप्ट है, जब भी स्ट्रोक के लक्षण आए आपने जाके डॉक्टर को दिखाया अपने न्यूरो को, या न्यूरो समझो अवेलेबल नहीं है, एक अच्छे MD फिजिशियन भी है वो भी काफ़ी बार डायग्नोज कर लेते हैं, और अगर हमने MRI किया उसमें दिख गया कि छोटा सा स्ट्रोक है, वो 3-4 घंटे का समय ऐसा है कि जिसमें आप ऐसा इंजेक्शन दे दो खून पतला करने का जिससे

0: स्ट्रोक रिवर्स होने के चांसेस हैं। दिक्कत तब आती है जब पेशेंट पेरिफेरी में है, वहाँ से न्यूरो के सेंटर तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब आए तब ऑलरेडी वो 24 घंटे गया, का समय निकल गया, तो उसके बाद हम उनको इंजेक्शन दे भी नहीं पाते हैं। तो उसमें जो इलाज रह जाता है हमारे पास, वो सिर्फ खून पतला करने की दवाई दो, बट उसमें दिक्कत यही है कि जो डैमेज हो गया है आप उसको रिवर्स नहीं कर पाते हो।
1: जी
0: तो सिर्फ खून पतला करने की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी, बट इससे काफ़ी बार पेशेंट डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो
1: ओके
0: इसके लिए हम बोलते हैं टाइम इज़ ब्रेन, मतलब जितना जल्दी आप अस्पताल पहुँचो उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर अजीत हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज
0: करेक्ट,
1: होते हैं,
0: बहुत
1: तो इसका क्या संबंध
0: खून
1: है?
0: अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो
1: ओ
0: जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है एज अ न्यूरो, हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है। तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयाँ, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे हैं, काफ़ी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है।
1: जी, तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है? मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए या
0: ये एक
1: बिल्कुल नहीं?
0: मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पालपिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफ़ी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, और उसको तुरंत खा लो। तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज़ है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना।
1: ओहो
0: क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और
1: ओहो
0: दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है।
1: जी
0: तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था, और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
1: जी जी
0: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: ओके
0: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना।
1: जी
0: द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुँच सको पहुँच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फ़ोन पे एक बार बात कर लूँ। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है।
1: बिल्कुल, और एक ज़माना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है
0: तो
1: ना?
0: इसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो
1: हाँ
0: उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि फ़ोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूँगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए,
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है वो
1: जी
0: एक साथ सब साफ हो जाता है।
1: जी जी
0: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं, अपेंडिक्स बोलिए, हर्निया, वो ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं, बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, और हम एक ज़रूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: पसंद का, आपने विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव, साथिया तूने क्या किया, बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम,
1: जी,
0: वो
1: SP
0: सुनना चाहूँगा।
1: बालासुब्रमण्यम की आवाज़ है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना ज़रूरी होता है?
1: तो दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है, वो पहले 5-7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो
0: जी
1: उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाता है। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए
1: बहुत
0: परिवार की?
1: सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कंट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, 3 दिन से अस्पताल में रख के फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको, रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफ़ी पेशेंट मान जाते हैं, फैमिलीज काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है। अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन,
0: जी
1: दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही
0: वो
1: सही
0: सही
1: था।
0: था
1: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि
0: जी
1: बीमारी का जो आउटकम है वो
0: हाँ
1: समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको
0: जी
1: समझाना काफ़ी मुश्किल
0: मुश्किल
1: बोल
0: होता
1: सकता
0: है।
1: हूँ मैं।
0: जी, और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए हो,
1: करेक्ट
0: तो
1: करेक्ट। तो वो जो एक
0: ये
1: मिथ है
0: जो
1: कि मेरे
0: बात है।
1: गांव में तो ऐसा हुआ था, हमने
0: हाँ
1: उनको एक ऐसा सिरप पिला

0: आया तो आप भी कुछ दे दीजिए।
1: हाँ
0: तो अब
1: हाँ
0: जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं,
1: जी
0: बट
1: जी
0: जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे, मतलब
1: जी
0: अदर देन एलोपैथी, कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के तीन चार जो भी दवाइयाँ हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फ़ायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफ़ी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेप, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ज़बरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमज़ोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो,
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज़ अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, दो
1: जी,
0: साल 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू।
1: जी
0: दो
1: जी
0: हज़ार एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है, मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो ऐसा।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा, एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: जी, सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले।
1: जी
0: एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं आई थिंक। अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।

0: अभी भी
1: जी
0: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है, पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज़ वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
1: जी
0: तो उसका
1: तो
0: हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
1: दवा
0: तो
1: ले लो
0: नेट पे उसका एक इलाज भी
1: बिल्कुल
0: अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो। तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए
1: हाँ
0: ऐसा कुछ कंपलसरी सीटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं
1: हाँ
0: है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहा है। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं, पेशेंट को 10 दिन दवाई, पेशेंट में दर्द एकदम गायब हो गया। और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने
1: जी
0: पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आँखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे हैं, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया
1: जी
0: या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए, तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
1: जी
0: अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं,
1: जी
0: और दवाइयाँ ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े। कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फ़ोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयाँ जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज़्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाता है। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं,
1: जी
0: और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज़ ये है कि इलाज हो जाता है, ख़राब चीज़ ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफ़ी लंबा चलता है।
1: जी जी
0: तो काफ़ी लोगों को कॉफ़ी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है, बट काफ़ी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
1: जी सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से भी होता
0: एग्जैक्टली,
1: है?
0: जैसे मैंने बताया चश्मा,
1: हाँ
0: नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हो, जिसको हम बोलते हैं रूट कनाल
1: जी
0: करवाना
1: जी
0: है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
1: इसकी वजह से भी
0: तो
1: सिर दर्द होता है?
0: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल
1: ओ
0: वो जाना है ब्रेन पे ही। काफ़ी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत है पेट की, पेट में
1: हाँ
0: जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है
1: जी जी
0: उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन एमआरआई सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: जी
0: हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
1: जी
0: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूँ। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज़ है, मैं लिख दूँ 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोस कर सको,
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
1: जी
0: इन्फेक्शन हो सकता है,
1: भाप ले लो
0: तो वो थोड़ा
1: और
0: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
1: जी
0: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
1: जी
0: दैट इज़ अ
1: जी
0: हाफ इन्फॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ
1: गया है
0: मैं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम,
0: करेक्ट
1: तो इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
0: करेक्ट करेक्ट
1: डॉक्टर से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: लें
0: वो जो पांच
1: और
0: परसेंट के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके।
1: जी
0: जैसे ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है, तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जाँच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जाँच है, तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है, उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है?

0: या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि
1: किस
0: एब्सेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर
1: किस
0: पड़ता है?
1: किस स्टेज पे आते हैं? काफ़ी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो
0: अच्छा.
1: इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफ़ी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल ICMR जो अपने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है, इसको हम अभी भी रोका जा सकता है, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो बट उनके जो चलने का पैटर्न है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
0: अच्छा.
1: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफ़ी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
0: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है, तो डॉक्टर से संपर्क कर लें.
1: करेक्ट।
0: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को.
1: लापता लेडीज़ का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूँगा मैं, सजनी रे,
0: जी
1: बहुत ही
0: सुनते
1: फेमस
0: हैं,
1: सॉन्ग है वो।
0: जी सुनते हैं ये गाना. अरिजीत सिंह की आवाज़ में है
1: जी
0: ये गाना.
1: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है ये?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज़ हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है,
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज

0: है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है, जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है।
1: ओ
0: तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी
1: कैंसर
0: तो मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, MRI किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे, तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
1: जी.
0: फिर MRI आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि MRI के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल. तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते, अचानक कोई तेज सिर दर्द और
0: देखो, जैसे ब्रेन
1: अचानक.
0: स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
1: दबे
0: स्पेसिफिक
1: पांव आने
0: मतलब
1: वाली बीमारी.
0: करेक्ट, तो काफ़ी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयाँ खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है, तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि MRI कराइए। दूसरा, वॉमिटिंग होती है इसमें, तब पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीज़ें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोले जाके MRI कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो MRI इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी
1: जी
0: में, वहाँ MRI छोड़े आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
1: जी
0: तो हर
1: जी
0: एक का MRI करना मुश्किल होता है।
1: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं
0: ऐसे
1: जिससे.
0: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप दे के रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज़्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो एक ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
1: जी. तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब.
0: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
1: जी सुनते हैं ये गाना.

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि एक तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह ही दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई, क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत ज़रूरी है।
1: करेक्ट।
0: तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही ज़रूरी होता है ब्रेन ट्यूमर
1: तो
0: में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत मेरे श्रोताओं को ना पड़े तो अच्छा है।
0: बिल्कुल।
1: मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं। स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी।
1: तो अगर वो मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन। तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है और उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं।
0: जी।
1: प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी। तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है, तो उसके बाद की जो सावधानी है, वो क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रहते हैं अस्पताल में। एवरेज स्टे फॉर ब्रेन ट्यूमर 5-7 दिन में मरीज जैसे थे उसी कंडीशन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। घर जाने का देख 10-15 दिन आफ्टर एनी मेजर सर्जरी, जो हम बोलते हैं 10-15 दिन आराम कीजिए, जो भी टाँके हैं सिर पे वो 2 हफ्ते बाद निकाल के, महीने भर में ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मरीज जो रहते हैं उनका चलना फिरना, खाना, बाहर की लाइफ एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। सर्जरी

0: का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी जी सके। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने का कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये दो तीन चीज़ में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती।
0: तो
1: तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक
1: जरूरी?
0: एक लक्षण है उसका। काफ़ी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
1: जी
0: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
1: जी
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है
1: जी
0: वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ।
1: जी
0: तो उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का,
1: जी जी
0: तो वहाँ अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफ़ी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो
0: उसे
1: उसके क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं,
1: ट्यूमर
0: गांठ।
1: वही
0: तो
1: है
0: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
1: जी।
0: जैसे बाकी के शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी
1: हाँ
0: हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
1: और
0: तो
1: फिर
0: उसके
1: इसका
0: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम
1: जी
0: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: क्या?
0: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज़ वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
1: जी
0: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डाइग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता।
1: जी
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफ़ी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लिए आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
0: स्ट्रोक,
1: जो?
0: यस, स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली, बहुत मीठा, शुगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस, जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिनजोमा, तो वो
1: जी
0: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं। जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है अगर उसके बीचों बीच है, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज

0: सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज़ बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप जाके
1: जी
0: अब न्यूरो को दिखाइए। बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े। तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज़ बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डाइग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि
1: जी
0: एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो
1: जी
0: आजू
1: जी
0: बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले।
1: जी जी
0: तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज़ें, नशा बंद कर दो, बहुत फ़ायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों
1: बिल्कुल
0: में कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियाँ जो है सिकुड़ती जाती है। तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम करना।
1: जी। तो ये जो जंक फूड की बात कही है तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं
0: करेक्ट
1: और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है
0: करेक्ट
1: ये।
0: तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने
1: जी
0: में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा। बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो
0: तो
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है। तो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेम्बर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किस से हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हॉर्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय, नाइट टाइम है। तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज़ हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है। तो
1: जी
0: किसी हद तक येस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयाँ इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है, सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम कर रहे, कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता
0: करेक्ट,
1: है,
0: तो उस
1: तो ये क्या कोई न्यूरो
0: न्यूरो रिलेटेड
1: प्रॉब्लम?
0: ही है, उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60+ एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना, और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांप

0: लगता है। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहा है तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको को बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज़ करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं, हम
1: जी जी
0: फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसा हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर्स या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेम्बर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं।
1: जी
0: बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
1: जी तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर
0: चलो
1: रहे हैं। नमस्कार।
0: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
4: मैं निकला ओ गटले
3: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
5: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
6: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
3: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।
7: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिसे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। जापान में एशियाई खेलों में आज पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हराया। भारत के लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उधर भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: अब थुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: स्वच्छता ही सेवा है।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलों वधाइयां।
4: लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं जुनून फिल्म के इस गीत से। आवाजें हैं विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल की।

दोस्तों अभी आपने सुना प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए अमित कुमार और साधना सरगम की आवाजों में किशन कन्हैया फिल्म का गीत।

दोस्तों इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
3: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
3: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गाँव से हुई थी।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
3: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
3: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
3: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
3: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए

0: या तो पैदल चलती या पशुओं का इस्तेमाल करती थी।
1: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
0: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
1: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
0: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा मैंने
2: अरे
3: कहा
2: सुनो
3: ना।
2: उफ, माँ।
3: अरे बेटा मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ। माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटना ही रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो,

0: दे दो ना माँ, दे दो।
1: अरे बेटा सुनो तो,
0: माँ एक लालटेन दे दो।
1: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
0: अरे माँ लालटेन दे दो।
1: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ, कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: माँ माँ माँ,
1: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
1: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
1: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ,
1: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
3: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
4: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
3: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया, और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
4: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गाँव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
3: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
4: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
3: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
4: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।

0: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
1: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे। वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो। अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
0: हाय ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
1: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
1: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
1: रक्कास,
2: नाचने वाला।
1: ताब,
2: ताकत, बर्दाश्त।
1: हिंसा,
2: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1,
1: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे।
2: सवाल नंबर 2,
1: घड़ी की आवाज कैसी थी।
2: सवाल नंबर 3,
1: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था।
2: सवाल नंबर 4,
1: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे।
3: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की

0: क्या प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ।
3: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ
4: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।

0: नाना पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर

0: स्वच्छता फैलाएंगे। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नूं पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानूं गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
0: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान। हम सब का यही सपना, स्वच्छ भारत हो अपना। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
4: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
4: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
5: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
6: अरोड़ा प्लाईवुड,
7: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
6: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
8: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6:20 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। दूरसंचार विभाग ने धोखाधड़ी से सिम कार्ड जारी किए जाने और IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में दवा और चिकित्सा उपकरणों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सिंचाई, सड़कों, पेयजल आपूर्ति तथा बुनियादी भंडारण ढांचे के विकास के लिए 2,295,27,00,000 रुपये की परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रदेश के राज्य

0: के विद्यालयों के पुस्तकालयों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की दो अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब समाचार विस्तार से। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को उनके नाम से जारी सभी मोबाइल नंबरों पर निगरानी रखने की सुविधा देता है और अनावश्यक नंबरों को ब्लॉक करता है। मंत्रालय ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी में दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग को रोकने में यह उपाय महत्वपूर्ण है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। आज नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने यह बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील भी की। हरियाणा सरकार ने सिंचाई, सड़कों, पेयजल आपूर्ति तथा बुनियादी भंडारण ढांचे के विकास के लिए 2,295,27,00,000 रुपए की ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें से 2,180,50,00,000 रुपए की ऋण सहायता नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत मिलेगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज चंडीगढ़ में राज्य में नाबार्ड की सहायता से चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली 6 प्रमुख परियोजनाओं में सिंचाई, पेयजल, सड़क और वेयरहाउसिंग बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश प्रस्तावित हैं। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि नए प्रस्तावों में 315,36,00,000 रुपए की कुल लागत वाली सिंचाई परियोजना शामिल है, जिसके लिए 299,59,00,000 रुपए की ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से सहायता प्रस्तावित है। इसके अलावा सड़कों के सुधार, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से संबंधित 57 परियोजनाओं की कुल लागत 495,71,00,000 रुपए है, जिनके लिए 470,92,00,000 रुपए की ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष से सहायता का प्रस्ताव है। दोनों प्रस्ताव कोष के पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालयों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने आज चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को राजकीय स्कूलों के कायाकल्प का कार्य एक तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों और शैक्षणिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होगी। यदि किसी स्तर पर कार्य में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी देश के लिए और अधिक से अधिक पदक जीत सकें, इस दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्कूलों से ही तैयारी

0: शुरू की जा रही है। इसके लिए राजकीय स्कूलों में खिलाड़ियों के लिए उच्च गुणवत्ता का खेल सामान और प्रशिक्षण मुहैया करवाया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी पुणे की सेंक्वायर और बेंगलुरु की नामी कंपनी इंटेलिसेंस सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार की मौजूदगी में विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुमन वशिष्ठ ने सेंक्वायर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनायक प्रभु और इंटेलिसेंस के निदेशक डॉ. श्रीपद राजा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन में विश्वविद्यालय की भूमिका सुनिश्चित करना है। यह कंडक्टर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की बड़ी पहल साबित होगी।
1: मैं एक यहाँ पर अपना बीटेक प्रोग्राम शुरू किया जो केबल सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, उसी के लिए हम लेबोरेटरी सेटअप करना चाहते हैं। उसके लिए आज एक हमने एमओयू साइन किया है, एक कंपनी है सेंसक्वायर और दूसरी है इंटेलिसेंस। सेंसक्वायर के माध्यम से हम जो उसका डिजाइन है उसको एआई से कैसे बनाएंगे, एआई का कैसे उसमें इनकॉर्पोरेशन होगा, जो मेम्स का और सर्किट्स का चिप फैब्रिकेशन का पैकेजिंग का जो काम है वो हम इंटेलिसेंस के माध्यम से करेंगे।
0: उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लाखों कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि यह रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार में खेल एवं युवा अधिकारिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में 59वीं 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 900 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियों को खेलों के क्षेत्र में बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता करवाई जा रही है।
2: आज 59वीं विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता हुई है। हरियाणा प्रदेश के पूरे खिलाड़ी आज पलवल की इस धरती पर आए हैं। यहाँ का प्रतिनिधि होने के कारण भी उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पलवल के अंदर लगातार नेशनल, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग गेम्स कराए जा रहे हैं, तो पलवल खेलों का हब बनेगा।
0: उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि नशे से दूर रहें और खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास संस्थान के प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा आयोजित समारोह में वैश्विक शिक्षक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार विशेष शिक्षा तथा बौद्धिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास, समावेशन और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। अब एक अच्छी खबर। हरियाणा के जिला पलवल के गांव कुलैना निवासी किसान बलराम पिछले कई वर्षों से जैविक एवं प्राकृतिक खेती के माध्यम से बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। वह खेती में विविधता को अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के मसाले, सब्जियां, दालें तथा बागवानी पौधे लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्रगतिशील किसान बलराम ने बताया,
3: पिछले काफी वर्षों से जैविक खेती द्वारा, प्राकृतिक खेती द्वारा बागवानी से जुड़े हुए हैं। सभी प्रकार के मसाले, सब्जियां, दालें और बागवानी पौधे भी हमने लगाए हुए हैं। समय समय पर सरकार की हमें सहायता मिलती रहती है, टेक्निकल नॉलेज भी मिलती रहती है और ड्रिप इरिगेशन, स्टैकिंग, मशरूम हट और लहसुन जैसी फसलों पर हमें अनुदान भी प्राप्त होता है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरसंचार विभाग ने धोखाधड़ी से सिम कार्ड जारी किए जाने और IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में दवा और चिकित्सा उपकरणों की निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किथे है?
1: धी दा नवा खाता ते मेरी केवाईसी अपडेट।
2: ए तां चटपट वाला काम है।
1: किवें?
2: जे केवाईसी दे वेरवे विच बदलाव नहीं, जां सिर्फ पता बदलिया है, ता रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन जां चिट्ठी राहीं सेल्फ डिक्लेरेशन दे दियो।
1: अते बाकी बदलाव?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार ओटीपी ते आधार आत ई केवाईसी नाल सिर्फ बैंक दे अधिकृत चैनल रही।
1: ए तां नूडल बनाउण जिन्ना सौखा है। आरबीआई कहंदा है।

0: इसी सुरक्षित बैंकिंग वाल पहला कदम।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला बुलेटिन दीआं खास खबरां। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान वल्लों अज बठिंडा दे तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा दे चौथे गेट की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री डॉ बलजीत कौर ने भरोसा दवाया 1013 लैक्चरारां दी भर्ती च अनुसूचित जातियां लई बनदा राखवां हिस्सा हर हाल च यकीनी बनाया जाएगा। सेहत मंत्री डॉ बलबीर सिंह वल्लों खुराक कारोबारियां नूं सफाई ते सुरक्षा मापदंड दी सख्ती नाल पालना करन दे निर्देश। पंजाब च मरदमशुमारी 2027 दिन आबादी गणना दा दूजा गेड़ 16 नवंबर तो अगले साल 4 जनवरी तक जारी रहेगा। ते महाराजा भुपिंदर सिंह पंजाब खेड यूनिवर्सिटी पटियाला वल्लों बजुर्गां दी सेहतमंद जीवन शैली नूं समर्पित 10 रोज़ा विशेष कैंप दा आगाज। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बठिंडा के तलवंडी साबो तो नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे गेट की शुरुआत की। उन्हां तख्त श्री दमदमा साहब विखे मथा टेकिया। इस मौके एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं श्री चौहान ने नशियां नूं ठल पाउण वास्ते लोकां नूं भी सद्दा दित्ता।
4: भारतीय जनता पार्टी नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करके समाप्त कर देगी, यह हमारा संकल्प। हम नशे की जड़ पर चोट करेंगे, हम उस चैनल को ध्वस्त करेंगे। ड्रग माफिया कौन है, और वो भी सावधान हो जाए, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो जाएंगे ही, लेकिन उनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। हम नशे के कारोबारियों को तबाह और बर्बाद करके रख देंगे, ये हमारा संकल्प है। इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं पंजाब की जनता से आज ये विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ, जुड़िए हमारी यात्रा के साथ, समर्थन दीजिए यात्रा को, मिलके हम साथ चलेंगे।
3: श्री चौहान नशियां नाल बर्बाद हो चुके परिवारों नूं भी मिले। इस मौके बीजेपी दे पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों, पंजाब इंचार्ज सतीश पूनिया, एचएस फूलका, तरनचुक सुनील जाखड़ भी उन्हां दे नाल मौजूद रहे। यह यात्रा पंजाब नूं दरपेश मौजूदा तीन वड्डियां चुनौतियां, वधदे नशाखोरी, विगड़दी कानून व्यवस्था ते शासन दे हर पद्धर ते भ्रष्टाचार उत्ते केंद्रित है। उधर पंजाब च नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे दिन यात्रा मोहाली के कस्बा लालड़ू विखे पहुंची, जिसकी अगवाई सीनियर बीजेपी नेता ते संसद मैंबर मनोज तिवाड़ी ने की। उन्होंने नाल राज्यसभा मैंबर सतनाम सिंह संधु, सुशील राणा ते होर आगू भी मौजूद रहे। श्री तिवाड़ी ने कहा कि बीजेपी ने पंजाब च नशे खिलाफ मुहिम विढ़ के आने वाली नौजवान पीढ़ी नूं बचाउण दा उपराला कीता। समाजिक सुरक्षा समाजिक न्याय अधिकारता ते घट गिनतियां बारे मंत्री डॉ बलजीत कौर ने अज स्पष्ट शब्दां च कहा कि पंजाब च कीती जा रही 1013 लैक्चरारां दी सिद्धी भर्ती विच अनुसूचित जातियां लई बनदा राखवां हिस्सा हर हाल च यकीनी बनाया जाएगा। SCBC अध्यापक जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नाल पंजाब भवन विखे मीटिंग दी प्रधानगी करदिआं डॉ बलजीत कौर ने लैक्चरार भर्ती च राखवें हिस्से ते होर मंगां संबंधी विस्थार नाल विचार वटांदरा कीता। उन्हां जथेबंदी दे नुमाइंदियां नूं भरोसा दवाया कि उन्हां दी हर चॉइस मंग नूं पूरी गंभीरता नाल विचारिया जाएगा ते कानून ते सरकार दी नीति मुताबक उसदा ढुकवां निपटारा कीता जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार समाज दे वांझे ते पछड़े वर्गां दे हक्कां दी राखी लई पूरी तरह वचनबद्ध है। जथेबंदी दे नुमाइंदियां वल्लों रखे गए सुझावां दी शलाघा करदिआं मंत्री ने कहा कि सरकार आपसी संवाद ते सार्थक विचार नूं लोकपक्षी शासन की मजबूत बुनियाद मानती है। इस मौके जथेबंदी के नुमाइंदियां ने उन्हां दीआं मंगां नूं ध्यान नाल सुनन ते भरोसा देने लई डॉ बलजीत कौर का शुक्रिया अदा किया। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNE जलंधर, यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸੇ

चौड़ी सड़कों, ऊंची इमारतों और आधुनिक बाजारों से नहीं होती। असली पहचान इस बात से होती है कि वहाँ कचरे का कितना वैज्ञानिक प्रबंधन होता है, सीवेज का पानी कहाँ जाता है, हवा कितनी साफ है और नागरिक अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए कितने जिम्मेदार हैं। आज हरियाणा इसी बदलाव के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा और सेवा पखवाड़ा जैसे अभियानों ने स्वच्छता को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जनभागी से जोड़ने का प्रयास किया है। रक्तदान, स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण, श्रमदान और सार्वजनिक स्थलों की सफाई जैसी गतिविधियां इसी सोच का हिस्सा हैं। लेकिन 2026 में हरियाणा के सामने स्वच्छता की चुनौती का स्वरूप पहले से कहीं व्यापक है। अब लक्ष्य केवल सड़कों से कचरा हटाना नहीं बल्कि कचरे को संसाधन में बदलना, सीवेज का पुनः उपयोग करना, प्रदूषण घटाना और शहरों को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना है। हरियाणा में इस दिशा में सबसे बड़ी नई पहल एकीकृत कचरा से बिजली परियोजनाओं के रूप में सामने आई है। 29 अगस्त 2026 को राज्य सरकार ने हिसार, अंबाला, फरीदाबाद और गुरुग्राम समूहों में 4 ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन 4 परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता प्रतिदिन करीब 5,000 टन नगरपालिका कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की होगी और लगभग 50 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ते शहरीकरण के साथ नगरपालिका कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। पुराना कचरा निस्तारण स्थलों और वर्षों से जमा कचरे का वैज्ञानिक निपटान भी बड़ी चुनौती है। इसलिए आने वाले वर्षों में केवल नए संयंत्र बनाना पर्याप्त नहीं होगा। घर से कचरे का पृथक्करण, नियमित संग्रहण, पुराने कचरे का वैज्ञानिक सुधार एवं निस्तारण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण, इन सभी को एक साथ लागू करना होगा। हरियाणा में तकनीक के माध्यम से भी स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी, शिकायतों के ऑनलाइन समाधान और नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण से जवाबदेही बढ़ाने की संभावना है। राज्य का सरल मंच भी विभिन्न सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने और उनकी स्थिति पर निगरानी रखने की सुविधा देता है। स्वच्छता की अगली बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे औद्योगिक तथा तेजी से विकसित हो रही अन्य शहरों में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया जारी है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाली चुनौती है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, बैटरी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले कचरे में ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनका सामान्य नगरपालिका कचरे के साथ निपटान पर्यावरण के लिए उचित नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अलग एकत्रित करने और अधिकृत पुनर्चक्रण व्यवस्था से जोड़ना आवश्यक है। इसी तरह किसी शहर की स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण पैमाना मलजल प्रबंधन है। यदि मलजल का उपचार किए बिना जल स्रोतों में प्रवाह होता है तो सड़कें साफ होने के बावजूद शहर वास्तव में स्वच्छ नहीं माना जा सकता। हरियाणा में उपचारित मलजल के पानी को सिंचाई और अन्य गैर पेय उपयोगों में लगाने की दिशा में परियोजनाएं चल रही हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में उपचारित पानी के उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े प्रायोगिक प्रकल्प भी किए गए हैं। यह मॉडल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि इससे एक तरफ ताज़े पानी की मांग कम की जा सकती है और दूसरी तरफ भूजल पर दबाव घटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उपचारित पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो और उसके उपयोग के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। स्वच्छता अभियान की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फिर भी नागरिक भागीदारी है। सरकार हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं बना सकती है, आधुनिक मशीनें खरीद सकती है और कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र स्थापित कर सकती है, लेकिन यदि घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं निकलेगा तो पूरी व्यवस्था पर दबाव बना रहेगा। हर परिवार यदि गीले और सूखे कचरे को अलग रखे, प्लास्टिक का अनावश्यक उपयोग कम करे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कूड़े में न डाले, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके और स्थानीय निकायों की व्यवस्था में सहयोग करे तो स्वच्छता अभियान का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। दरअसल 2026 का हरियाणा स्वच्छता को केवल झाड़ू और सफाई तक सीमित रखने के बजाय उसे कचरा प्रबंधन, ऊर्जा, स्वच्छ हवा, जल संरक्षण, तकनीक और नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 नए कचरा से बिजली प्रकल्प इस बदलाव का बड़ा उदाहरण है, लेकिन इनकी वास्तविक सफलता निर्माण की घोषणा से नहीं बल्कि समय पर निर्माण, वैज्ञानिक संचालन, पर्यावरणीय मानकों के पालन और पारदर्शी निगरानी से तय होगी। 17 सितंबर से शुरू होने वाला स्वच्छता संदेश इसलिए केवल अभियान की तारीख नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक संकल्प का अवसर बन सकता है। स्वच्छ हरियाणा का रास्ता केवल सरकारी मशीनरी से नहीं बल्कि उस घर से होकर गुजर

0: लगता है जहाँ कचरा अलग किया जाता है, उस सड़क से होकर गुजरता है जहाँ कूड़ा नहीं फेंका जाता, और उस व्यवस्था से होकर गुजरता है जहाँ कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन माना जाता है। जब शासन, तकनीक और समाज इन तीनों की भूमिका एक साथ मजबूत होगी, तभी स्वच्छता ही सेवा का संदेश वास्तव में स्वच्छता ही जीवन शैली में बदल सकेगा। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।
1: हुण तुसीं सुन रहे सी हरियाणा राज दी हफ्तावारी समाचार समीक्षा। असीं आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तों बोल रहे हैं 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुण सुनो कुछ पंजाबी गीत।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੈਮਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ।

इस गीत में आप आवाज़ सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों की, फिल्म का नाम एलओसी कारगिल। इस गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने और संगीत था अनु मलिक का। अब आपको सुनवा रहे हैं सड़क फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पोडवाल ने। सुरेंद्र और साथी के बोल हैं और गीत की धुन बनाई

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दूरियां फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सुदर्शन फाकिर के बोलों को संगीत से सजाया है जयदेव ने और आवाजें हैं भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला

0: शताब्दी की भक्ति रचनाएं सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं हनीमून फिल्म का गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
5: जयमाला कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
6: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
7: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
6: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
7: एचआईवी
6: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
8: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
9: एड्स एचआईवी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
10: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
9: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
10: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
9: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। जतिन ललित ने इस गीत की धुन बनाई है और गीत के बोल समीर के हैं।

0: अरे अब तक घंटी नहीं बजी, 10 बज चुके हैं, अब तक तो घंटी बज जानी चाहिए। क्या बात है, कॉलेज की छुट्टी तो नहीं है आज?
1: अरे नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, मैंने खुद प्रिंसिपल को ऑफिस में जाते देखा है।
0: फिर क्या बात है, आओ ऑफिस में चलकर शर्मा से पूछे।
1: हाँ हाँ चलो।
0: शर्मा जी क्या बात है, 10 बज चुके हैं, कॉलेज की घंटी नहीं बजेगी आज?
2: क्या बताऊं, कहां मर गए आज सबके सब चपरासी। आप सब लोग अपनी अपनी क्लास में चलिए, मैं जल्दी से घंटी बजवाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
3: सर रामरथ अभी तक नहीं आया, वक्त हो गया है, घंटी कौन बजाएगा?
4: हाँ शर्मा जी वक्त हो गया है, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी, मगर रामरथ अब तक क्यों नहीं आया? खैर वासुदेव को कहिए कि घंटी बजा दे।
3: वासुदेव ने तो 2 दिन की छुट्टी ली है सर।
4: तो फिर साइंस लेबोरेटरी के फरीद को बुलाकर जल्दी से घंटी बजवाइए।
3: सर मालूम हुआ है कि फरीद भी आज नहीं आया।
4: ओफो, क्या कॉलेज के सभी चपरासियों ने हड़ताल की है? राम रख नहीं वासुदेव।

0: नहीं फरीद नहीं, तो कोई और होगा, 8 चपरासी हैं हमारे कॉलेज में, किसी से भी बजवा लीजिए घंटी।
1: सर मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ, मेरी सुनता ही कौन है। हरनाम सिंह से कहा था कि भैया जरा घंटी बजा देना, तो कहने लगा कि मेरा काम सिर्फ ऑर्डर घुमाना है, घंटी बजाना नहीं। पर आप ही बताइए प्रिंसिपल साहब, मैं क्या करूं।
0: यही तो कमी है शर्मा जी आप में, रामरख है नहीं, दूसरा कोई चपरासी घंटी बजाता नहीं, ऐसी हालत में आपके सामने दूसरा कोई हल नहीं है।
1: सर आप भी मुझ पर ही खफा होने लगे, मुझे रास्ता तो बताइए कि मैं क्या करूं।
0: अरे भले आदमी, इसमें करना ही क्या है, 10 कब के बज चुके हैं, घंटी अब तक बज जानी चाहिए थी। जाइए आप ही जल्दी से घंटी बजा दीजिए।
1: क्या क्या मैं बजाऊं घंटी?
0: क्यों क्या हो गया, अगर आज घंटी आप ही बजा देंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा?
1: सर आज तक मैंने अपनी साइकिल की घंटी के सिवाय दूसरी कोई घंटी नहीं बजाई।
0: आप भी हद करते हैं शर्मा जी। अच्छा जाइए काम करिए अपना, मैं बजा देता हूँ घंटी।
1: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए मैं बजाता हूँ घंटी, मेरे होते हुए भला आप तकलीफ करेंगे?
0: तो फिर जाइए और जल्दी से घंटी बजा डालिए।
1: जाता हूँ सर जाता हूँ, बस एक ख्याल आता है सर, वरना अब तक तो मैंने कब की घंटी बजा दी होती।
0: कह डालिए कौन सा ख्याल है वो?
1: आप तो जानते ही हैं सर कि मेरा साला इसी कॉलेज में पढ़ता है,
0: तो
1: अगर घंटी बजाते हुए कहीं उसने मुझे देख लिया और घर जाकर अपनी बहन को कह दिया तो
0: क्या होगा?
1: तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा सर।
0: वो कौन सी मुश्किल है जिसमें आप फंस जाएंगे?
1: अब क्या अर्ज करूं सर, घर जमाई क्या बन गया हूँ, मैंने तो गुलामी ही लिख कर दे दी है।
0: ओफो, तो अब आप दफा हो जाइए, मैं खुद ही घंटी बजा लूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं सर, आप बैठिए सर, मैं जाता हूँ बजाता हूँ घंटी।
2: मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
0: हाँ हाँ आओ आओ सुजात, क्या बात है?
2: सर मैं यशपाल से तंग आ गई हूँ, जरा उसे समझाइए, अगर मेरे पिताजी को उसकी हरकतों का पता लग गया तो बहुत बुरा होगा, उनका गुस्सा बहुत खराब है।
0: क्या हुआ आखिर, कुछ कहो तो।
2: सर वो प्रेम दीवाना है, उसने दुनिया भर में डंका पीट दिया है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, जबकि मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है।
0: मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने और कहने की?
2: हिम्मत का क्या है सर, आजकल कोई भी लड़की किसी लड़के से जरा हंसकर बोल ले तो बस वो समझता है कि लड़की उसके प्रेम में पागल है। सचमुच ये लड़के बड़े दीवाने होते हैं।
0: तो मतलब ये हुआ कि तुम भी यशपाल से हंसकर बोल चुकी हो, हाँ?
2: इसमें बुराई ही क्या थी सर, एक दिन पार्क में मैं अपनी बहन और जीजा जी के साथ बैठी थी, यशपाल भी उधर आ निकला, मैंने सहपाठी समझकर अपनी बहन और जीजा जी से उसका परिचय करवाया। उस दिन के बाद उसने एक दो बार मुझसे किताबें मांगी, मैंने दे भी दी, बस इसी से उसको गलतफहमी हो गई कि मैं उसे प्रेम करती हूँ। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या कसूर है?
0: पर आज क्या बात हुई, इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो?
2: आज तो बात बहुत बिगड़ गई है सर, मैं कॉलेज के फाटक में घुसी ही थी कि किसी लड़के ने मुझे कुछ कहा, इस पर यशपाल उस पर बिगड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। मेरे बारे में इस तरह की लड़ाई झगड़े हों ये अच्छा नहीं है सर, इसमें मेरी बदनामी होती है।
0: कहाँ है वो लोग?
3: वो लोग फाटक के पास झगड़ रहे हैं।
0: अच्छा तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं अभी देखता हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ अपनी अपनी क्लासों में। यशपाल तुम मेरे साथ ऑफिस में आओ। सुनिए शर्मा जी, ड्राइवर से कहिए कि सुरेंद्र को जल्दी से मेरी कार में अस्पताल ले जाए।
1: जी बहुत अच्छा सर। अरे कहाँ? अरे वासुदेव, ओहो वासुदेव भी छुट्टी पर गया है।
0: तो क्या बात थी यशपाल?
4: बात कुछ खास नहीं थी सर, सुरेंद्र मेरे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो गर्म हो गया, बात बढ़ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई।
0: हाथापाई भी ऐसी कि तुमने सुरेंद्र का सिर ही फोड़ दिया? ऐसा क्या व्यक्तिगत मामला था तुम्हारा तो उसे दखल देने की जरूरत पड़ी और तुम्हें उसका सिर फोड़ने की जरूरत आ पड़ी?
4: कैसे बताऊं सर, शर्म आती है।
0: बहुत खूब, शर्म आती है और वो भी तुम्हें, अपने सहपाठी का सिर फोड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई और अब वजह बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही है, अनोखी किस्म के शर्मदार हो तुम। वक्त खराब मत करो मेरा, बोलो क्या बात थी, जल्दी बोलो।
4: सर वो मेरे प्राइवेट मामले में दखल दे रहा था, ये मुझे सहन नहीं हुआ।
0: आखिर क्या प्राइवेट मामला है तुम्हारा, जवाब दो।

0: सुरेंद्र मेरे और सुजाता के बीच नाजायज दखलंदाजी कर रहा था।
1: क्या संबंध है तुम्हारा और सुजाता का?
0: सर, हम दोनों एक दूसरे को।
1: हाँ हाँ, बोलो बोलो, तुम दोनों एक दूसरे को?
0: सर, बात यह कि सुजाता मुझको और मैं सुजाता को।
1: रुक क्यों गए? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, तुम सुजाता को और सुजाता तुमको। क्या
0: असल बात यह है सर कि हम दोनों एक दूसरे को
1: प्रेम करते हैं?
0: यस सर।
1: प्यार करते हैं?
0: जी हाँ।
1: मोहब्बत करते हैं? यही ना?
0: जी हाँ सर, जी हाँ।
1: गधे हो तुम अव्वल दर्जे के।
0: जी,
1: तुमने अपनी सारी शर्म और हया घोल कर पी डाली है। सुजाता तुमसे प्रेम प्रेम कुछ नहीं करती।
0: मगर सर वो
1: तुम ही एक नंबर के बेवकूफ हो जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल है न दूसरी लड़की की इज्जत का।
0: मैंने क्या किया है सर? सब जानते हैं कि मैं और सुजाता काफी नजदीक हैं।
1: लगता है कि शर्म और अक्ल से तुम्हारी खानदानी दुश्मनी है। कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ तुमने ही डंका पीट रखा है। अगर सुजाता ने अपनी बहन और जीजा जी से तुम्हारा परिचय करवा दिया, तुम्हें अपनी किताबें दे दी, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो तुमसे प्यार करने लगी है। अगर तुम्हारी ये बेहुदा बात मान भी ली जाए कि तुम सुजाता से प्रेम करते हो, तो इसमें सुरेंद्र का सिर फोड़ने की नौबत कहां से आई?
0: सर, मैं सुजाता से कुछ कहना चाहता था, तभी सुरेंद्र ने उसे छेड़ दिया। मैंने उसे मना किया तो उसने मुझे उल्टा जवाब दिया, बस बात बढ़ गई।
1: तुम जैसे आवारा और जाहिल लड़के ही कॉलेज के नाम को बदनाम करते हैं। किसी लड़की की बदनामी का दर्द तुम्हें तब मालूम हो यशपाल, जब तुम्हें अपने बहन की बदनामी का दर्द उठाना पड़े।
0: सर, मैंने किसी को बदनाम नहीं किया।
1: बको मत, चोरी और सीना चोरी, शर्म तो आती नहीं और ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। अगर सुजाता के पिताजी को मालूम हो गया तो क्या होगा? सुरेंद्र का सिर फूट गया है, उसके घर वाले यहाँ कॉलेज में आएंगे। उन्हें क्या जवाब दोगे तुम और क्या जवाब दूंगा मैं? क्या करूं अब मैं तुम्हारा? पुलिस के हवाले कर दूं या कॉलेज से निकाल दूं?
0: नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं खतावार हूं, कसूरवार हूं। इस बार तो मैं दोस्तों के सिखाने से भूल कर बैठा।
1: कौन है ये दोस्त?
0: मेरी ही क्लास के लड़के हैं सर।
1: क्या सिखाया था उन्होंने?
0: यही कि सुजाता बड़ी घमंडी लड़की है, किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर यशपाल उसे काबू में लाकर दिखाएं तो हम भी माने कि उसमें कुछ है।
1: और तुम उनकी फूंक में आकर कूद पड़े मैदान इश्क में। ये बताओ कि तुम्हारी कोई बहन है?
0: हाँ सर, दो बहनें हैं।
1: फर्ज करो इसी तरह कोई तुम्हारी बहनों को बदनाम करने की कोशिश करे तो क्या करोगे तुम? चुप क्यों हो, जवाब दो।
0: सर, ऐसी बात तो कोई भी नहीं सहन कर सकता।
1: तो जो बेजा हरकत तुम सहन नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरों से कैसे उम्मीद रखते हो कि वो सहन ही कर लेंगे? क्या तुमने ये समझ लिया है कि सुजाता के कोई है ही नहीं?
0: सर, सच में मैं दोस्तों के कहने में आकर नादानी कर बैठा, मगर इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ।
1: बस बस ठीक है, मेरे पांव पड़ने और क्षमा मांगने से क्या होगा? तुम्हारी हरकत से सुजाता को मानसिक कष्ट पहुंचा है और सुरेंद्र को शारीरिक पीड़ा, वे तुम्हें कैसे क्षमा कर देंगे?
0: मैं उन लोगों से भी माफी मांग लूंगा सर, पहले आप तो क्षमा कर दीजिए।
2: मैं अंदर आऊं सर?
1: आइए
2: सर, रामरख आ गया है।
1: रामरख आ गया है? कहाँ है?
2: बाहर बैठा है, लगता है कुछ नशा करके आया है।
1: अच्छा, अंदर भेजिए उसे।
2: जी बहुत अच्छा सर।
3: जयराम जी की साहब।
1: जयराम जी की। अब तक कहाँ थे तुम?
3: अस्पताल गए थे साहब।
1: अस्पताल जाना था तो छुट्टी क्यों नहीं ली, खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारी लापरवाही से कितनी परेशानी हुई है हम लोगों को। क्या बीमारी है तुम्हें, क्यों गए थे अस्पताल?
3: बीमारी तो हमें कुछ भी नहीं है साहब।
1: बीमारी नहीं है तो फिर अस्पताल क्यों गए थे?
3: कुछ काम से गए रहे साहब।
1: बीमारी का इलाज कराने के सिवाय अस्पताल में क्या काम हो सकता है?
3: होता है साहब, आजकल अस्पताल में भी काम होता है।
1: क्या होता है, कुछ बोलोगे भी?
3: साहब, हम खून देने को गए थे।
1: खून? कैसा खून?
3: अपना खून साहब। कल यहाँ एक दुर्घटना हुई, अपने कॉलेज का एक लड़का मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था साहब। दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया।
1: अच्छा।
3: कल रात मैंने रेडियो पर एक ऐलान सुना था कि उसी छात्र को खून दिया जाना है, लेकिन ओआर रकम का खून मिल नहीं रहा है और इसीलिए लोगों से दरखास्त की गई थी। प्रिंसिपल साहब, पिछले महीने जब कॉलेज में मेरे खून की जांच हुई थी ना, तो मुझे याद था कि मेरा खून उसी रकम का है, इसीलिए आज सुबह मैं अपना खून देने अस्पताल चला गया, इसी कारण मुझे देर हो गई। हम चपरासी जरूर हैं साहब, लेकिन हमें भी तो अपने छात्रों के लिए कुछ करना है ना साहब।
1: शाबाश रामरख, शाबाश, सचमुच तुमने बहुत नेक और बहादुरी का काम किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे कॉलेज का एक चपरासी अपने कर्तव्य में इतना आगे निकल गया।

0: उसने पढ़े लिखे समझदार लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूं रामरख। तुम्हारे आने से पहले जितना दुखी था उससे कई गुना अधिक खुश हुआ हूं। ये लो 10 रुपए, दूध पीना और तुम घर जाकर आराम करो।
1: नहीं साहब, नहीं, रुपए हम नहीं लेंगे।
0: क्यों?
1: अभी जो मन में खुशी है, रुपए लेने के बाद तो हमारा मन दुखी हो जाएगा साहब।
0: रामरख, ये रुपए मैं तुम्हें खुशी से दे रहा हूँ। शरीर में कुछ कमजोरी आ गई होगी, दूध पियोगे तो कुछ चुस्ती आ जाएगी भैया।
1: नहीं साहब, हमका कमजोरी नहीं आई है, हमें तो और ताकत आ गई है। हम भी दूसरों के कुछ काम आ सकते हैं, इसी खुशी के आगे कमजोरी मालूम ही नहीं पड़ती साहब।
0: फिर भी रामरख, बात मानो और ये रुपए रख लो भैया।
1: हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब, रुपए हमको नहीं चाहिए, ये रुपए ले लीजिए साहब।
0: अच्छा, तो घर जाकर आराम ही करो, हम खुद घंटी बजा लेंगे।
1: पर साहब, घंटी बजाने का काम तो हमारा है ना।
0: अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और आराम करो।
1: अच्छा साहब, जाता हूँ। मैं तो डर ही गया था कि देर हो गई है, आज साहब नाराज होंगे।
0: अरे नहीं नहीं, नाराज गलत कामों पर हुआ जाता है, अच्छे कामों पर नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ।
1: अच्छा साहब, नमस्ते।
0: नमस्ते। यशपाल
2: जी,
0: तुम सुन रहे थे ये सब कुछ?
2: हाँ सर।
0: देख लो, वो एक अनपढ़ चपरासी है और तुम पढ़े लिखे विद्यार्थी।
2: समझ रहा हूँ सर, वो अनपढ़ इंसान भी मुझे मात दे गया है। मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी अस्पताल में जाकर उतना खून तो दे सकूं जितना सुरेंद्र के सिर से चला गया है।
0: तो तुम समझ चुके हो कि आदमी का खून भी देश की अमानत है।
2: हाँ सर।
0: आपसी झगड़ों के लिए इसे जमीन पर नहीं बहाना है। यशपाल, ये रामरख भी एक प्रेम दीवाना है। अगर तुम्हें प्रेम दीवाना ही बनना है तो रामरख की तरह बने।
2: यस सर।
3: प्रेम दीवाना, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री ब्रजभूषण की लिखी ये नाटिका सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे बिशन खन्ना, मिश्रीलाल, शशि पंजाबी, मुन्ना बागला, अतुल दुबे और मंजू भाटिया। प्रस्तुतकर्ता थे श्री पुरुषोत्तम दारवेहकर।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
2: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
2: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

चित्रलोक कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं। रिवॉल्वर रानी फिल्म से इस गीत को गाया है मोइन साबरी ने। इस गीत के बोल लिखे शाहीन इकबाल और पुनीत शर्मा ने, संगीत संजीव श्रीवास्तव का है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गीत सुनिधि चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: किक फिल्म में अभी अब आप सुनेंगे

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अब समय है एक अंतराल का।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लाया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी और 1000+ विनर्स, 2 लीटर एमिस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। आज ही खरीदे, 5 सितंबर और 25 सितंबर को लकी ड्रॉ है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: गणपति बप्पा।
3: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। सुनते हैं अंतराल के बाद कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है हीरोपंती फिल्म से। इसे गाया अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने। कौसर मुनीर के बोल और संगीत है साजिद वाजिद का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत अंकित तिवारी की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है एक विलेन, मनोज मुंतशिर की शब्द रचना है और संगीत है अंकित तिवारी का।

है यारियां फिल्म का गीत, इसे गाया है तुलसी कुमार और गजेंद्र वर्मा ने। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और

0: पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

0: प्रदान करेंगी।
1: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकतानगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकतानगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकतानगर पहुंच चुके हैं। एकतानगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद

0: निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रात्रि के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत एस डी बर्मन का था।

0: ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था रजिया सुल्तान। इसे लिखा था जानिसार अख्तर ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म जुवारी से लिया है। गाने वाले कलाकार मुबारक बेगम, कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर हैं। गीतकार आनंद बख्शी हैं और धुन बनाई है कल्याण जी, आनंद जी ने।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था जुआरी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पूजा के फूल। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म पूजा के फूल का ये गीत सुना। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए और मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश।

फिल्म शरीफ बदमाश का गीत अभी आपने सुना, युगल स्वर आशा भोंसले और किशोर कुमार के थे। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है चाचा जिंदाबाद। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, आवाजें आशा भोंसले और सखियों की, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम।

0: इस रचना के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुता, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किमे फैलदा है?
2: एचआईवी
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किमे संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

करीना। उनकी बहन करिश्मा कपूर पहले ही फिल्मों में आ चुकी थीं और करीना कपूर का फिल्मों में आगमन अमिताभ बच्चन की बेटी अभिषेक बच्चन के साथ सन 2000 में हुआ जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी के जरिए।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी अभिनेत्री जो टिपिकल बॉलीवुड के रोल भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो गंभीर भूमिकाएं निभाती हैं।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें करीना कपूर की। करीना कपूर जाने माने अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बेटी हैं। उनके दादा राज कपूर शोमैन के नाम से विख्यात थे, यानी कपूर खानदान का रोशन चिराग है।

जैसा कि मैंने आपसे कहा, करीना कपूर ने एक तरफ टिपिकल बॉलीवुड हीरोइन वाली भूमिकाएं बहुत खूबी से निभाई हैं, दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर फिल्में भी आई हैं, जैसे सुधीर मिश्रा की फिल्म चमेली, जिसके जरिए पहली बार वो एक गंभीर अभिनेत्री के तौर पर जानी गईं।

भारद्वाज की फिल्म ओंकारा में उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार बड़ी खूबी से निभाया था। साल 2007 में आई वो फिल्म कैसे भूल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। इस फिल्म के निर्देशक थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में करीना कपूर के साथ नायक थे शाहिद कपूर और ये फिल्म थी जब वी मेट।

रिफ्यूजी के बाद करीना कपूर की फिल्म आई मुझे कुछ कहना है। इसके अलावा उनकी कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में हैं अजनबी, यादें और कभी खुशी कभी

करीना कपूर ने अपने अभिनय के जरिए अपना लोहा मनवाया है और आज वो मुंबई फिल्म जगत की एक प्रतिभाशाली चोटी की अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

करीना कपूर अपनी भूमिकाओं का चुनाव बहुत सोच समझ कर करती हैं। जाहिर है कि ऐसे में उनकी गिनी चुनी फिल्में आ रही हैं, लेकिन इन फिल्मों में वो अपने चाहने वालों को निराश नहीं कर रही हैं। जैसे धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म कुर्बान में उन्होंने बहुत सशक्त अभिनय किया।

साल 2009-2010 की बेहद चर्चित फिल्म रही है थ्री इडियट्स। विधु विनोद चोपड़ा का निर्माण और राजकुमार हीरानी का निर्देशन। थ्री इडियट्स जहां आमिर खान के लिए जानी जाती है, वहीं करीना कपूर की एक मस्त भूमिका के लिए भी याद की जाती है।

करीना कपूर ने बड़ी मेहनत के साथ कपूर खानदान के अभिनय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वो फिल्म संसार की सिर्फ सजीली हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए बिल्कुल जाना जाता है। एक मैं और एक तू, जिसमें वो इमरान खान के साथ नजर आईं, शाहरुख खान की फिल्म रावण, निर्देशक अनुभव सिन्हा।

फिल्म सत्याग्रह, इसे प्रकाश झा ने निर्देशित किया है। साल 2014 में करीना कपूर की फिल्म आई सिंघम रिटर्न्स, इसके निर्देशक थे रोहित शेट्टी।

सैफ अली खान से ब्याह रचाने के बाद करीना कपूर अब जरा चुनिंदा फिल्में ही करती हैं। उनकी धूम धड़ाका मचाने वाली फिल्म रही है सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान।

2016 में करीना कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में काम किया। इस फिल्म के निर्देशक थे अभिषेक चौबे और इस फिल्म में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। साल 2018 में करीना कपूर ने शशांक घोष की फिल्म की वीर

0: साल 2020 में करीना कपूर ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नैना की भूमिका निभाई थी। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री करीना कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं मोहब्बत तीन तरह की होती है, जो हमें मिले कबूल करे ये नसीब है। दूसरी वो जिसे चाहे वो इंसान मिल जाए ये मुकद्दर है। और तीसरी मोहब्बत वो होती है कि हमें मालूम होता है कि उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे ही इश्क कहते हैं। और ये इश्क बड़ा बेरहम होता है।

से ना जाओ के अभी रात बाकी है, पहलू में आ जाओ के अभी रात बाकी है, जी भर के तुम्हें देखूं तस्कीन तो हो कुछ मत, शम्मा बुझाओ के अभी रात बाकी है, कब दिन निकले कब रात कटे कौन ये जाने, छोड़ के न जाओ तन्हा के अभी रात बाकी है, कट जाए यूं ही उल्फत की बातों में ये पल, जागो हमें जगाओ के अभी रात बाकी।

मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर वादा नहीं करना के वादे टूट जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर जिद नहीं करना के साथी छोड़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो कभी शिकवा नहीं करना, ये शिकवे गिले दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो सिर्फ मोहब्बत करो ना जाना, कि मोहब्बत ही मोहब्बत को मजबूत करती है।

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मैंने मोहब्बत का चेहरा तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारी जैसा होता। तुम्हें पता है, तुम वो इनाम हो जो बिन मांगे मिल गया, वो खजाना हो जिसका कोई मोल नहीं। तुम्हें देखते ही सांसें महक जाएं, धड़कने बहक जाएं, मेरे बाग़े मोहब्बत का वो खुशनुमा फूल हो तुम। किसी नेकी का सिला जख्मों का मरहम, दोस्त जाने मन सुकून जिंदगी। मुख्तसर सी बात है, मेरा सब कुछ हो तुम।

सुनो जानम, मेरे लिखने से क्या हासिल, तुम पढ़ो तो कोई बात बने। मेरे सोचने से क्या हासिल, तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूँ तो क्या हासिल, तुम कुछ कहो तो कोई बात बने। मैं फूल हूँ तो क्या, तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने। मेरे चाहने से क्या हासिल, तुम भी महसूस करो तो कोई बात बने। मैं बेरंग हूँ तो क्या, तुम उल्फत का रंग भरो तो कोई बात बने।

मोहब्बत सावन नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो महताब है बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है मगर कभी फना नहीं होता, तुम्हें देखूं तो कहीं भी नहीं सोचूं तो कुछ भी नहीं मगर जो कह दूं तो तुम मेरे होने की सनद हो, मेरी एक हद है और उसमें बेहद हो।

अब क्या सुनाऊं, दास्ताने इश्क यार, सुनने वाले मिलते हैं, दर्द आशना मिलता नहीं। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाज़त। शुक्रिया, नमस्कार।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ की जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रोग्राम दा अगला गीत जस्सी सिद्धू दी आवाज़ विच।

0: 1097 ते कॉल करो. पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा जनहित विच जारी.
1: प्रोग्राम दा अगला गीत जिमी कलेर दी आवाज़ विच.

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
2: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
2: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
3: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
2: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: Meet India's scale and growing demand.
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा

0: निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz ते 11:05 हो चुके ने। हुण साडी अज दी सभा खत्म हुंदी है। सवेरे 5:55 ते फिर हाजिर होवांगे। तद तक दे लई इजाजत दिओ। जय हिंद।